आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
6: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 90971602।

बेटियों को विदा कर बारातियों से विदा मांगते हुए राजा जनक ने समधी तथा उनके स्वजनों का भरपूर सम्मान किया। मुनि मंडली के सामने शीश झुकाकर उनका आशीष प्राप्त किया और फिर जामाताओं को हाथ जोड़े अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए बोले, आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन बनाकर मुझे अपनाया। मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा अपरिमित है। मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे ये याचना करता हूं कि मेरा मन भूलकर भी आपके श्री चरणों को ना छोड़े। श्री राम ने पिता दशरथ, मुनिवर विश्वामित्र, कुलगुरु वशिष्ठ तथा पिता सदृश जनकराज का विनयपूर्वक सम्मान किया। मिथिलेश ने भरत को स्नेहपूर्वक प्रेमाशीष दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आशीषा और फिर मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में नतमस्तक हुए, जिनकी कृपा से ही आज उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बोले, हे स्वामी, आपकी अनुकंपा से ही मुझे ये सुख, सुयश और सभी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं।

जनकपुर में अपने चारों पुत्रों के विवाह का शुभ कार्य संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ सभी सगे संबंधियों सहित अयोध्या लौटे। राजकुमारों की बारात की वापसी का समाचार पाकर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भेरी और शहनाई, नगाड़े और ढोल तथा शंख की मंगल ध्वनियां चारों दिशाओं में गूंजने लगी। प्रसन्नता से झूमते नगर निवासियों ने घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों तथा नगर द्वारों को तोरण और ध्वज पताकाओं से सजाया। घर घर मंगल कलश सजाए गए। अयोध्या का ये सजा संवरा रूप देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। राजमहल की रचना कामदेव के मन को भी मोहित करने वाली है। सामूहिक उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके राजा दशरथ के महल में सर्वत्र छा गया है।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656569536 या 9656557902।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456651 या 9707065775।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
10: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029994921 पे,
10: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMZ पर।
11: ठक ठक।
12: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
13: अच्छा मिला ही नहीं।
12: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
12: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
14: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोपराइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87-894-18744।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99-393-65-930।
6: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
0: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
0: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
0: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
0: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
0: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
0: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
10: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62002434 03 62002434

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
6: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, मंगलपुर पुल में आई दरार को लेकर इंजीनियरों की टीम ने की जांच। बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर फिलहाल लग गया रोक। बकरीद को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, दंडाधिकारियों को किया गया तैनात। फॉर्मर रजिस्ट्री में पूरे बिहार का नंबर वन जिला बना गोपालगंज। और जनजाति के लोगों को सरकारी लाभ देने के लिए चल रहा है अभियान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। मंगलपुर पुल में आई दरार के बाद जिला प्रशासन ने बड़े वाहनों का पुल से आवागमन रोक दिया है। इसको लेकर जिला पदाधिकारी के निवेदन पर बिहार सरकार के बड़े इंजीनियरों की टीम आकर इस पुल का जांच की। बताया जा रहा है कि इंजीनियरों ने जांच के बाद जिला प्रशासन को आश्वस्त किया है कि यह पुल ठीक है, इसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं आई है। बड़े वाहनों के आवागमन से बीच में दरार पड़ गया है और उसको जल्द ही रिपेयर कर ठीक कर लिया जाएगा। इसके लिए टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। इंजीनियरों की टीम ने जिला प्रशासन को आश्वस्त किया है कि एक महीने में इस पुल को फिर से मरम्मत कर और पूर्ण रूप से ठीक कर दिया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने आज प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि पुल को लेकर बहुत चिंता की जरूरत नहीं है। बड़े अनुभवी इंजीनियरों ने आकर जांच पड़ताल किया है और उन लोगों ने कहा है कि पुल की स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन फिलहाल बड़े वाहनों का आवागमन रोका गया है और जल्द ही इस पुल के निर्माण कार्य को शुरू कर इसे बड़े वाहनों के आने जाने के लिए भी तैयार कर दिया जाएगा। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को अदालत से फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। अदालत ने अगली सुनवाई को मुकर्रर की है, परंतु तब तक बाहुबली विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। गिरफ्तारी पर अदालत ने रोक लगा दिया है और इस मामले में अब फिर से सुनवाई होगी। बकरीद को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बकरीद की तैयारियों के संदर्भ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा,
7: एक ब्रीफिंग है, हमने जॉइंट ऑर्डर निकाल दिया है 197 जगह पर गोपालगंज सदर के अनुमंडल में, लगभग 103 जगहों पर आपको हथवार मंडल में हम लोगों ने पुलिस बल और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है और आज हम लोग ब्रीफिंग करेंगे, तो इसकी पूरी तैयारी हम लोग मुकम्मल कर।
6: वहीं पूरे बिहार में फॉर्मर रजिस्ट्री का काम भी जोर शोर से चल रहा है। इस दौरान गोपालगंज जिला पूरे बिहार में नंबर वन स्तर पर है। यहां काफी तीव्र गति से फॉर्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा है। इस उपलब्धि पर आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा से पूछा गया तो उन्होंने बताया,
7: 9.53 ऑफ आवर टास्क, 99.53 हम लोगों ने कर लिया है। और मैं बताऊं कि इस बीच एक और डेवलपमेंट था कि हम लोग का एग्री फार्मर्स रजिस्ट्रेशन हो रहा था। फार्मर्स रजिस्ट्रेशन के दूसरे दौर जो प्रारंभ हुआ 12 मई से, उसमें हम लोग पूरे राज्य में टॉप कर रहे हैं। इसके लिए आज मुख्य सचिव महोदय ने साधुवाद भी दिया है, परंतु चूंकि 50% 60% की उपलब्धता का टारगेट है और हम लोग बॉटम 10 में पहले हुआ करते थे, जो अब हम लोग घसक के ऊपर में चले गए हैं, तो इसकी मुख्य वजह यह है कि हमारे यहाँ सीएस खतियान प्रिवेलेंट है। लेकिन हमने स्ट्रेटजी की और आपको भी जानकारी होगी कि हमने 10 तारीख को अम्बेडकर भवन में सभी राजस्व कर्मचारी और किसान सलाहकार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर विकास मित्र तालीम मरकज के शिक्षा मित्र सब को बुलाया था, उसे हमने ट्रेनिंग दिया और हमने ये बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द जाबंदी क्रिएटेड आफ्टर 2017-18। उसको जैसे ही कैप्चर कीजिएगा, बिकॉज वो जाबंदी हमारी हर तरह से शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार के परिभाषण की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब यही कि हम लोग पुरानी जाबंदियों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो पहले टारगेट अचीव करना है, चूंकि ये हम लोग जब 100% कर लेंगे तो भारत सरकार से हम लोग को 925 करोड़ रुपये प्राप्त हो, एक ऐसा काम है जिसमें राशि प्राप्त होनी है, बाकी काम में राशि खर्च होनी है, तो इसके लिए हम लोग को तहे दिल से लगना होगा, खासकर जबकि हम उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। ये हमें बताते प्रसन्नता हुई कि हम लोग सेकंड फेज में टॉपर हैं पूरे देश पूरे राज्य में।
6: बिहार सरकार के निर्देश पर पूरे बिहार में पिछड़ी जाति और जनजाति के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इसको लेकर गोपालगंज में भी जोर शोर से अभियान चल रहा है। प्रथम चरण के अभियान में कई क्षेत्रों में कैंप लगाकर जनजाति के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने आज प्रेस वार्ता की और इस संदर्भ में बताया,
7: गरिमा उत्सव मनाया गया था, इसके तहत राष्ट्रव्यापी अभियान जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले, यही इसका स्लोगन था, का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ 18/5/26 को 11 बजे समाहरणालय सभा कक्ष में इसके उद्घाटन से किया गया और इसमें 22 विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा जिले के उसका गाँव प्रखंड का चयन किया गया है। आपको मालूम है कुछ का गांव हमारा स्पेशल ब्लॉक भी है, जहां दिनांक 20/5/26 से 23/5/26 तक शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में उसका गांव प्रखंड के 11 पंचायतों के कुल 19 गांवों को जोड़ा गया है। प्रत्येक शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा कैंप लगाया गया। प्रत्येक चिकित्सा कैंप में सभी विभागों का स्टॉल लगाया गया, जहाँ जनजाति के लोगों को सरकारी योजनाओं से आच्छादित किया। शिविर में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी 22 योजनाओं के संबंध में जन सुनवाई भी की गई, जिसमें सभी विभाग के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी कर्मी उपस्थित रहकर कुल 400 आवेदनों का प्राप्त किए और जिसमें 376 का निष्पादन किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं के अंतर्गत 125 आवेदन पत्र प्राप्त किए गए, इनमें 101 का निष्पादन किया गया है। मैं डिटेल शेयर कर देता हूँ, पंचायत का नाम और गांव का नाम। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने सुविधाएं जिन मदों में हमारे एप्लीकेशन है वो किन मद में थे बता दूँ। आधार कार्ड बनाने हैं तो 4 आवेदन आए, पीएम उज्ज्वला योजना के 14 आए, आयुष्मान भारत कार्ड के 4 आए और वीडो और इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन को के 22 आवेदन आए, 22 के 22 निष्पादित किए गए। पीएम मातृ वंदना योजना के 2 एप्लीकेशन आए हैं और स्किल सेल टेस्टिंग के 207, कास्ट सर्टिफिकेट के 7/7 डिस्पोजल, स्किल सेल टेस्टिंग के 207 के 207 आवेदन डिस्पोजल और राशन कार्ड के 53 मामले आए, जो कि सभी 53 निष्पादित किए गए। जो मिसाइल सर्टिफिकेट है तो हमारे पास 8 आवेदन आए, जो 8 के 8 निष्पादित किए गए। इसी प्रकार मनरेगा के 79 एप्लीकेशन आए, जिसे निष्पादित किया गया। अदर कैटेगरीज में इस प्रकार आप देखेगा कि 400 आवेदनों में से 376 का निष्पादन किया गया और अदर कैटेगरीज में भी आप देखें तो बर्थ सर्टिफिकेट के 31 मामले आए, तो सभी निष्पादित कर दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन के 26 मामले आए, जो 20 के 20 निष्पादित हुए, 6 पेंडिंग है अभी। स्किल इंडिया मिशन के 2 आवेदन आए जो पेंडिंग है। पीएम आवास योजना के 64 में से 50 मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का 1 मामला है, जिसे मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दे दिया गया है। नल जल कल के तहत 1 योजना आई है। इस प्रकार 125 के अगेंस्ट में हम लोगों ने 101 योजना का उन्होंने निष्पादन कर दिया। इसके अलावा 600 व्यक्तियों की चिकित्सीय जांच भी की। ये चिकित्सीय जांच जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र दही भत्ता में 65 लोगों का चिकित्सीय जांच किया गया और यदि आप बीमारी के बारे में पूछे क्या पाया गया, तो वही बता दूं कि एनीमिया के 10 पेशेंट उसमें आइडेंटिफाई हुए, टीबी के 12, बीपी के 35, मधुमेह के 35।
6: इधर ग्रामीण विकास अभिकरण गोपालगंज के द्वारा मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में लगातार लापरवाही एवं खराब कार्य प्रगति को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। विजयपुर प्रखंड में कार्यरत कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा जितेंद्र कुमार का अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। जारी आदेश के अनुसार योजनाओं के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगातार असंतोषजनक प्रगति पाई गई थी और विभागीय समीक्षा बैठकों और पत्राचार तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कार्यों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई। वहीं बताया जा रहा है कि विद्युत विभाग ने भी ढीले तारों को मानक के अनुरूप दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। शहरी क्षेत्रों में 23 से 24 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 22 से 23 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। अग्निशमन विभाग के द्वारा भी 95 पेट्रोल पंपों एवं 46 गैस एजेंसियों का फायर ऑडिट किया जा चुका है। साथ ही जिले के महत्वपूर्ण स्थलों एवं हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अग्निशमन वाहनों की तैनाती भी की गई है। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में भीषण गर्मी और लू से बचाव को लेकर तथा बाढ़ सुखाड़ के संदर्भ में भी पूर्व तैयारियों को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक की गई। इसमें विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने अपने अपने विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों एवं अनुपालन की स्थिति से जिला पदाधिकारी को अवगत कराया। बताया गया कि जिले में कुल 28,204 चापाकल हैं, जिनमें से 3,107 योजनाएं संचालित हैं। बंद पड़े चापाकलों की मरम्मति के लिए 14 मरम्मति दलों का गठन किया गया है तथा 3 टैंकर भी क्रियाशील हैं। बेजुबान पशुओं को राहत देने के लिए चापाकलों एवं ट्यूबवेल के पास पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। जिला पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायतों में क्या करें क्या ना करें क्या व्यापक प्रचार प्रसार कराने का प्रत्येक पंचायत में निर्देश दिया गया है, तो वहीं प्याऊ लगाने का भी निर्देश दिया गया। श्रम विभाग ने पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों, सुगर मिलों एवं ईट भट्ठों में पेयजल एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर रहा है। वहीं परिवहन विभाग भी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में पेयजल, ORS एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। माझा थाना क्षेत्र के सुदा शाह के टोला में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट और चाकू से हमला के मामले में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में छापेमारी करते हुए बहोरा हत्ता गांव से श्रीराम महतो, परशुराम महतो और कर्णपुरा के जनार्दन महतो को गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही। जिला पदाधिकारी ने भीषण गर्मी को लेकर कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों की छुट्टियों को फिर से 5 दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया है। हालांकि इसका अब तक आधिकारिक पत्र जारी नहीं हुआ है, क्योंकि 26 तारीख तक पहले से ही विद्यालय को बंद किया गया है। ऐसे में अब 26 तारीख के बाद 5 दिन और भी स्कूल की छुट्टियों को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि 8वीं कक्षा से ऊपर तक के विद्यालय या संस्थान सुबह 11 बजे तक ही संचालित हो सकेंगे। इधर सिरीपुर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी वकील राजभर और दूसरा एक महिला है। दोनों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शिक्षा विभाग नियम विरुद्ध अपने अंदाज में कार्य करने को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है। बताया जा रहा है कि 3 वर्षों से शिक्षा विभाग में लगातार सुधार और अमूल परिवर्तन को लेकर अपर मुख्य सचिव के पाठक, एस सिद्धार्थ और बी विजेंद्र के द्वारा लगातार नित नए फरमान जारी किए गए, परंतु सब ढाक के 3 पात होकर रह गए। शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे अधिकारी गण के विरुद्ध कार्रवाइयां भी हुई, फिर भी अपेक्षाकृत सुधार न हो सका। अभी बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर के बीओ पद पर पदासीन आशा कुमारी, जिनके विरुद्ध डीओ गोपालगंज के तत्काल प्रभाव से विभागीय कार्रवाई हेतु गठित प्रपत्र को अपने कार्यालय पत्रांक 643 दिनांक 24/6/25 द्वारा निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना को 1 साल पहले भेजा जा चुका है, परंतु 1 वर्ष से पड़ा फाइल कार्रवाई के जद में धूल फांक रहा है। इस प्रकार गंभीर आरोप की पुष्टि होने के उपरांत भी सुशासन की सरकार में कार्रवाई टाटा फीस होकर दिख रही है। हालांकि अब बैकुंठपुर के ही विधायक वर्तमान में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं। ऐसे में अब लोग बीओ पर जारी किए गए विभागीय कार्रवाई के संदर्भ में अब शिक्षा मंत्री से भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कटिया थाना क्षेत्र के खुरहुरिया वार्ड नंबर 11 में पुलिस ने छापेमारी कर आकाश कुमार के घर के दक्षिण दिशा में बने फूस के पलानी के पास आकाश कुमार को पकड़ लिया। इसके पास से तलाशी के दौरान पुलिस को देसी कट्टा मिला है। पूछताछ में आरोपी ने अवैध हथियार के संदर्भ में बताया कि वह उसके बुआ के गाँव के अंकित कुमार राम, जो रूपी बगही थाना कटिया जिला गोपालगंज का निवासी है, उसके साथ मिलकर ये दोनों आरोपी आम जन में दहशत फैलाने के उद्देश्य से इस अवैध हथियार को रखे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर दीपू कुमार और सोनू कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, साथ ही शत्रुघ्न कुशवाहा की भी गिरफ्तारी हुई। ये लोग दर्जी पट्टी थाना कटिया के निवासी हैं। इन अभियुक्तों के द्वारा भी इस अवैध हथियार के संदर्भ में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। अब इन सभी आरोपियों पर पुलिस आर्म्स एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई कर रही है और इनके पुराने आपराधिक इतिहास को लेकर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में आज बहुत सारे किसान जिला समाहरणालय के परिसर में विरोध प्रदर्शन कर सरकार से अपनी मांग कर रहे थे। इस दौरान अपनी मांग पत्रों को भी जिला पदाधिकारी के माध्यम से सरकार को सौंपा गया, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, बीज बिल वापस करने, किसानों का कर्जा माफ करने, किसान मजदूरों को 60 वर्ष की आयु पर 10,000 मासिक पेंशन देने और सासामुसा चीनी मिल को पेराई सत्र शुरू करने और किसानों मजदूरों के पुराने भुगतान को कराने के लिए मांग किया गया। ऐसे 13 मांगों को लेकर मांग पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से सरकार को भेजा गया। आज फिर से एक 15 वर्षीय किशोरी मोबाइल टावर पर चढ़ गई और प्रेम प्रसंग में प्रेमी को बुलाने की जिद पर अड़ी हुई थी। इस दौरान भारी संख्या में लोग जुट गए। किसी तरह किशोरी को बहला फुसला कर मोबाइल टावर से उतारा गया और पुलिस अपने साथ ले गई। यह मामला मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के टेक निवास गांव का बताया जा रहा है, जहां गाजी गौरा गांव में 15 वर्षीय किशोरी मोबाइल टावर पर चढ़ गई और प्रेमी को बुलाने की जिद कर रही थी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मंगलपुर पुल में आई दरार को लेकर इंजीनियरों की टीम ने की जांच। बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर फिलहाल लग गया रोक। बकरीद को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, दंडाधिकारियों को किया गया तैनात। फॉर्मर रजिस्ट्री में पूरे बिहार का नंबर 1 जिला बना गोपालगंज। और जनजाति के लोगों को सरकारी लाभ देने के लिए चल रहा है अभियान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
9: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
8: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
10: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
11: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
12: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
11: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
12: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
11: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
13: ठक ठक।
14: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
13: अच्छा मिला ही नहीं।
14: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
13: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
14: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
13: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
15: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
16: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
17: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
18: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
17: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434668 पे।
19: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
20: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
21: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
22: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493945651 या 9707065775।
23: भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा, अनुपम खेल के साथ।
24: वीर सैनिकों, मृत्यु सिर्फ एक बार मिलती है। अपने धर्म के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जीवन बलिदान का गौरव सिर्फ एक बार मिलता है। मुगलों को कुचल डालो, एक एक राजपूत पांच पांच शत्रुओं को मारेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
25: युद्ध की ये हुंकार उठी थी मेवाड़ की धरती से और चुनौती दी गई थी दिल्ली के तख्त पर बैठे मुगल बादशाह अकबर को। इतिहास में बहुत कम किरदार ऐसे मिलते हैं जिनका संघर्ष, इनकी लड़ाई हार और जीत के पैमाने पर नहीं तोली जाती। उन किरदारों का संघर्ष, स्वाभिमान और लड़ाई आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन जाती है। उनकी जिंदगी महागाथा बन जाती है, इसे पढ़ना, सुनना और देखना जरूरी होता है। नमस्कार, मैं अनुपम खेर। भारतवर्ष में इस बार गौरव गाथा महाराणा प्रताप की, जिन्होंने अपने आन बान और स्वाभिमान की खातिर जान देने और लेने की ठानी थी। कहते हैं मेवाड़ के महाराणा प्रताप की वीरता ऐसी थी, जब उनकी मौत हुई थी तो उनके सबसे बड़े दुश्मन अकबर की आंखें नम हो गई थी।
23: 1560 का भारत, दिल्ली के तख्त पर नौजवान मुगल बादशाह अकबर बैठा था। तभी दिल्ली से तकरीबन 600 मील दूर चित्तौड़गढ़ के जंगलों में उसका लगभग हम उम्र लड़का भाले और तलवार से खेल रहा था। वो नौजवान था मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह का बेटा कीका। यही कीका आगे चलकर अकबर का महान प्रतिद्वंद्वी बना। इन्हें ही आगे चलकर महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है।

0: तुम दोनों ने आने में विलंब कर दिया मित्रों।
1: खेल अभी खत्म नहीं हुआ।
2: कीका, कीका, शाम हो गई है, माँ बुला रही है।
0: आ रहा हूँ।
3: कीका, मेवाड़ के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले भील समुदाय में लड़के को प्यार से कीका कहकर बुलाया जाता है। कई फारसी ग्रंथों में भी महाराणा प्रताप का नाम राणा कीका के नाम से लिखा गया है। कहते हैं कि महाराणा प्रताप का शुरुआती जीवन भील समुदाय के बीच बीता था, लेकिन इसकी वजह क्या थी जबकि उनके पिता मेवाड़ के राजा थे।
4: राजस्थान में आज जहां उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिला है, वही मेवाड़ कहलाता था। गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे कुछ इलाके भी मेवाड़ का ही हिस्सा थे। मेवाड़ के बड़े हिस्से पर सिसोदिया वंश के राजपूतों का शासन था। बताया जाता है कि मेवाड़ की राजधानी पहले कुंभलगढ़ हुआ करती थी। उन्हीं दिनों 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। उनके पिता राजा राणा उदय सिंह थे और माँ रानी जयवंताबाई थी। महाराणा प्रताप अपने भाइयों में सबसे सक्षम माने जाते थे, लेकिन पिता उदय सिंह की राय कुछ और थी। दरअसल उदय सिंह ने कई शादियां की थी, लेकिन उनका लगाव सबसे ज्यादा अपनी छोटी रानी से था।
5: महाराज,
6: कैसी हैं आप?
5: जी, ठीक हूं।
6: महारानी
5: जी। महाराज,
6: आप चुप क्यों हैं? बैठिए
5: जी।
6: आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों है?
5: नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जगमाल के बारे में सोच रही थी।
6: क्या हुआ उसे? सब ठीक तो है?
5: जगमाल तो ठीक है, लेकिन उसके भविष्य का क्या होगा, ये चिंता मुझे खाई जा रही है।

0: महारानी, आप जगमाल की चिंता क्यों कर रही हैं? वो हमारा उत्तराधिकारी है और फिर हमारे बाद सब कुछ उसे ही तो संभालना है।
1: छोटी रानी के प्रेम में राणा उदय सिंह ने पुत्र जगमाल को ही अपना उत्तराधिकारी बनाने का मन बना लिया था। वो छोटी रानी की बातों में आ गए थे। दूसरी तरफ राजा उदय सिंह ने राणा प्रताप के रहने की व्यवस्था चित्तौड़गढ़ से बाहर दूर एक गांव में कर दी थी।
2: भटियाणी महारानी थी जिसका लड़का जगमाल था, तो उससे ज्यादा स्नेह वगैरह हो गया, तो एक प्रताप डिस्कार्डेड के ढंग से कि प्रताप को राजमहलों में नहीं रखा, तलेटी में उनको माता और पुत्र को रखा। परंतु जहाँ तक अर्ली पीरियड का ट्रेनिंग है, जेमर और दूसरे व्यक्तियों के नाम आते हैं कि जिन्होंने उसको शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या का ज्ञान कराया था।
3: चित्तौड़ में सिंहासन के उत्तराधिकार को लेकर शुभबुगाहट शुरू हुई थी। इससे पहले कि राजा उदय सिंह इस बारे में कोई घोषणा करते, मेवाड़ पर एक बड़ा संकट मंडराने लगा। ये संकट अकबर की अगुवाई में मुगलों के आक्रमण का था।
1: मुगल बादशाह अकबर की नजर उत्तर और पश्चिम भारत के उन राज्यों पर थी जिन पर राजपूत राजाओं का शासन था। उन राज्यों के अधिकार के लिए अकबर ने सहयोग और मैत्री की नीति अपनाई। इस कोशिश में अकबर ने आमेर के राजा भारमल की बेटी से विवाह किया था। मेवाड़ का सिसोदिया वंश मुगलों से ऐसे संबंध और समझौते के खिलाफ खड़ा था। वहीं मेवाड़ और उसकी राजधानी चित्तौड़ की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि अकबर उसे हर हाल में मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाना चाहता था।
4: इसकी व्यापारिक महत्ता भी है इस क्षेत्र की। सारे गुजरने जितने भी कारवांस हैं वो वहाँ से गुजर रहे हैं, व्यापार के भी। अगर उसे दक्षिण जीतना है और स्थायित्व रखना है, जीतना अलग बात है, दक्षिण को जीत कर वहाँ पर अपना स्थायी शासन जमाना है, तो उसे बीच के जो रास्ते हैं उनको अपनाना बहुत ज़रूरी है। उस दृष्टि से वो मेवाड़ भी लेना चाहता था।
1: अकबर की अगुवाई में मुगल की एक बड़ी फौज मेवाड़ की तरफ बढ़ी। रणनीति के मुताबिक वह सबसे पहले चित्तौड़ पर धावा बोलने वाले थे। इस आक्रमण की खबर जब तक राणा उदय सिंह को मिलती तब तक देर हो चुकी थी।
5: महाराज, हमें सूचना मिली है कि मुगलों की फौज ने कई गांव वालों को बाहर करवा दिया है, कई जगह आग लगवा दी है और कुछ बस्तियां उजाड़ दी है।
6: महाराज की जय हो। महाराज, मुगलों की फौज चित्तौड़गढ़ किले की ओर बढ़ती आ रही है।
7: महाराज, इससे पहले मुगलों की सेना चित्तौड़गढ़ किले को घेर ले, हमें कुछ करना होगा।
8: सिसोदिया वंश के शासकों ने आज तक मुगलों के सामने ना तो घुटने टेके हैं ना घुटने टेकेंगे। हम वो नहीं जिन्होंने मुगलों से रिश्ता जोड़कर राजपूतों के स्वाभिमान को कलंकित किया है। हम अकबर को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। हम अरावली की घाटी में छुपकर उस पर हमला करेंगे। जाओ, राजमहल के लोगों को उदयपुर ले जाने की तैयारी करो।
5: जी महाराज,
8: जाओ।
1: राणा उदय सिंह चित्तौड़ को छोड़कर उदयपुर जाने का फैसला कर चुके थे। इससे पहले कि मुगलों की सेना चित्तौड़गढ़ के किले में घुसती, राणा उदय सिंह परिवार समेत वहां से उदयपुर चले गए।
2: कहते हैं कि प्रताप ने इसका विरोध किया कि महाराणा चले जाएं, मैं खुद यहाँ रहूँगा। परंतु सारी जो वार काउंसिल थी, युद्ध परिषद थी, युद्ध परिषद ने एक मत से निर्णय लिया था कि सपरिवार यहाँ ज़्यादा है जाना आवश्यक है, क्योंकि संघर्ष चलाई रखना है और संघर्ष चलाई रखने के लिए महाराणा और उसके परिवार को जीवित रखना ज़्यादा जरूरी है।
1: अकबर की अगुवाई में मुगल फौज चित्तौड़ पर कहर बनकर टूटी। उन्होंने चित्तौड़ के आम लोगों निवासियों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। यहां तक कि मुगल सैनिकों ने घर में बैठे बूढ़े बच्चों और महिलाओं को भी निर्दयता से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों के घरों में आग लगा दी, कई गांवों को उजाड़ दिया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चित्तौड़ में अकबर के सैनिकों ने करीब 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। चित्तौड़ की भीषण तबाही और बादशाह अकबर की बेरहमी ने राजस्थान के राजपूत राजाओं को हिलाकर रख दिया था।
9: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
10: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
9: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
10: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
10: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
11: सुनिए,
12: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
11: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
12: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
11: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
13: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
14: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
13: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
14: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
15: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
16: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
15: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
16: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
17: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
16: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
17: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
16: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
17: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
18: निर्दोष नागरिकों को कत्लेआम कराना 30,000 की संख्या ऐतिहासिक रूप से जो तथ्य सम्मत बैठती है, वो 30,000 वहां पर है, उस सारी जनता का कत्लेआम कराना, ये जो ऑर्डर दिया गया, जब युद्ध भी बंद हो गया है, आप जीत भी गए हैं, आप विजयी रहे हैं, दूसरा पक्ष भाग गया है, ऐसा अमानवीय कृत्य कराना ऐसे आदमी के लिए जिसको बहुत इतिहासकारों ने महान भी कहा है, उनके चेहरे पर वो दाग है।
19: युद्ध में मेवाड़ के कई इलाकों पर मुगलों का कब्जा हो गया। राणा उदय सिंह मुगलों से लड़ाई में अकेले पड़ चुके थे। आसपास के राजा एक के बाद एक अकबर की अधीनता कबूल कर रहे थे। दूसरी तरफ वो बीमार भी रहने लगे थे। मेवाड़ में इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी कि अब मेवाड़ का भविष्य किसके हाथों में होगा, कौन राजा बनेगा। और उन्हीं दिनों एक दिन राणा उदय सिंह ने अपने पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।

0: महारानी, जगमाल कहाँ है?
1: जगमाल
2: जी पिताजी।
0: पुत्र, हमारे जाने के बाद

0: एकमाल को राजगद्दी पर बिठाया गया तो समस्या और बढ़ जाएंगी। राणा प्रताप से योग्य कोई दूसरा नहीं जो हमारा नेतृत्व कर सके।
1: सर्वसम्मति यह है कि राजगद्दी पर जगपाल की जगह पर राणा प्रताप को बिठाया जाए।
2: मेवाड़ के कई सामंतों को लगता था कि राणा प्रताप मुगलों के खिलाफ मेवाड़ को फिर से खड़ा कर सकते हैं। राणा प्रताप ने कुछ सफल सैन्य अभियानों की अगुवाई कर अपनी वीरता, युद्ध कौशल और नेतृत्व क्षमता का परिचय दे दिया था।
3: राणा प्रताप को गद्दी पर बैठना चाहिए, उसके पीछे जो बहुत से लोगों ने तर्क दिए या अपने अपनी बातें कही, वो तर्क और बातें ये बताती हैं कि राणा प्रताप ने अपने अर्ली करियर में जरूर ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए हैं जिससे कि परिपक्वता सामने आ चुकी है। अन्यथा जो मेवाड़ के सरदार हैं वो इस तरह की बातें उसके पक्ष में कहते नहीं। दूसरा ये है कि राणा प्रताप को भीलों से बहुत सहयोग मिला, वो राणा बनने के बाद संभव नहीं है। वो राणा बनने से पहले ही उन्होंने कुछ ऐसा काम उस स्थानीय जाति के साथ उठ बैठ करके किया है जो कि अलग से था, क्योंकि राणाओं के संबंध भीलों से ठीक ठीक थे लेकिन ज़्यादा अच्छे नहीं थे। लेकिन राणा प्रताप को जितना सहयोग भीलों से मिला उतना और किसी समूह से नहीं मिला।
0: तो फिर राजगद्दी पर जगपाल की जगह राणा प्रताप को बिठाना चाहिए।
2: मेवाड़ को महाराणा प्रताप की जरूरत थी। मेवाड़ के पुराने सामंत और लोग जगमाल की जगह राणा प्रताप को राज सिंहासन पर देखना चाहते थे, जबकि पिता राणा उदय सिंह जगमाल को पहले ही राजा घोषित कर चुके थे। कहते हैं कि जिस दिन राणा उदय सिंह की मृत्यु हुई उसी दिन सामंतों ने गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। गोगुंदा उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर अरावली की चोटियों पर बसी वो जगह है जहां महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ।
4: ये मेवाड़ के लिए और हमारे लिए बहुत कठिन वक्त है। मेवाड़ के उत्तर, पूर्व, पश्चिम दिशा में मुगलों ने अपना साम्राज्य बना लिया है, लेकिन सिर्फ दक्षिण की दिशा है जहां पर वो अब तक कब्जा नहीं कर पाए। हमारे आस पड़ोस के क्षत्रिय राजाओं ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया है। यहां तक कि एक राजा ने अपनी पुत्री का विवाह भी एक मुगल के साथ कर दिया, लेकिन हम उनकी तरह नहीं हैं। मेवाड़ और सिसोदिया वंश ने कभी अपनी स्वाधीनता और अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया है।
5: महाराज, हम मुगलों के सामने नहीं झुकेंगे, हम उनका सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे।
4: हाँ, यह सच है कि मुगलों के साथ इस लड़ाई में अब तक हमारे बहुत सारे योद्धा मारे गए। मेवाड़ और चित्तौड़ का एक बहुत बड़ा इलाका अब मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन चुका है, लेकिन हम मुगल साम्राज्य के साथ मिलकर या झुककर कभी भी अपनी स्वतंत्रता को खोएंगे नहीं। हम स्वाधीन थे, स्वाधीन हैं और हमेशा स्वाधीन रहेंगे।
5: प्रताप के, महाराणा प्रताप के।
6: कोई व्यक्ति अपनी वैयक्तिक और अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने को प्रस्तुत है, संदिग्ध है, संकल्पबद्ध है, कर रहा है, क्रियाशील है और उसने वो कार्यान्वित भी किया है, अपने आप को बर्बाद और मिटा करके किया है। महाराणा प्रताप चाहते तो कितने ही पूरे राजस्थान क्या कितने प्रांतों के वो सूबेदार और क्या क्या नहीं बन सकते थे, लेकिन उन्होंने लड़ना बेहतर समझा।
5: प्रताप के,
2: महाराणा प्रताप के हुंकार ने मेवाड़ के सामंतों और सैनिकों में नया जोश भर दिया। उन्होंने राणा प्रताप के भाई जगमाल को राजगद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद जगमाल मेवाड़ छोड़कर परिवार समेत बादशाह अकबर की शरण में चला गया। जगमाल से पहले महाराणा प्रताप के एक और भाई शक्ति सिंह ने मुगलों की अधीनता कबूल कर ली थी। अकबर ने जगमाल को न सिर्फ पनाह दी बल्कि उसे जहाजपुर की जागीर भी दी। जहाजपुर अब भीलवाड़ा जिले का एक शहर है।
1: जगमाल की तरह कई राजपूत राजा और सामंत मुगल शहंशाह के खेमे में चले गए थे, लेकिन अकबर की नजर अब भी मेवाड़ पर थी। मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा प्रताप के बैठते ही अकबर ने एक बार फिर मेवाड़ को हासिल करने की कोशिश तेज कर दी। कहते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप के पास एक के बाद एक चार

0: दूत भेजे थे। अकबर हर हाल में मेवाड़ को मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाना चाहता था।
1: अकबर उत्साही हो चुका था राजकुमारी आमिर राजकुमारी के साथ विवाह करने के बाद। उसे लग रहा था कि हर राजा जो है वो अपनी राजकुमारी, अपना इस तरह के पारिवारिक संबंधों के द्वारा वो एक राजनीतिक स्थायित्व को प्राप्त कर सकता है। तो इसी दृष्टि से वो चाहता था कि राणा प्रताप भी उसके साथ एसोसिएशन में, अलायंस में आ जाए। और उसने बाद में जब देखा कि वो राजकुमारी देने को तैयार नहीं है, तो धीरे धीरे वो इस बात पर आ गया कि केवल वो एक राजकुमार को भेज दे जो कि उसके दरबार में आकर के हाजिरी दे दे।
2: आलमपना, महाराणा मुगल सल्तनत से किसी भी किस्म का समझौता नहीं करना चाहता। वो आपके दरबार में आना तो दूर, आपसे मिलना भी नहीं चाहता है।
3: जलाल खान, तुम अपनी कोशिश में नाकामयाब रहे इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना बंद कर दें। मानसिंह।
4: जी महाराज।
3: मानसिंह, तुम महाराणा के पास जाओ। हमें पूरा यकीन है कि तुम खुशी की खबर लेके आओगे।
4: जी महाराज।
5: आमेर के कुंवर मान सिंह की उम्र सिर्फ 21-22 साल की थी। तेज दिमाग और बलशाली योद्धा मान सिंह शहंशाह अकबर का वफादार था। अकबर को उम्मीद थी कि क्षत्रिय मान सिंह महाराणा प्रताप को किसी सुलह या समझौते के लिए राजी कर लेगा। मान सिंह को एक बड़े दल के साथ महाराणा प्रताप के पास भेजा गया।
6: मान सिंह आमिर जो बाद में जयपुर कहलाता था उसके राजकुमार थे, कुमार थे। और प्रताप ने दो कारण, अकबर ने दो कारणों से भेजा। सफल हो तो उसका मकसद पूरा हो जाता है, असफल होगा तो राजपूतों में भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तत्परता पैदा कर सकता हूँ।
7: मेवाड़ में आपका स्वागत है मानसिंह जी।
4: हम आपके आतिथ्य से अति प्रसन्न हैं।
7: ये तो कुछ नहीं है मानसिंह जी, मेवाड़ के महाराजा महाराणा ने आपके सम्मान में उदय सागर झील में एक विशेष भोज का आयोजन किया है।
4: ओहो, ये तो महाराणा का बड़प्पन है। उदय सागर झील की शीतलता में शांति से बात हो पाएगी। चलिए, हम महाराणा से वहीं मिलेंगे।
5: आगे उदयपुर की उदय सागर झील पर आयोजित भोज में जो कुछ हुआ वो कहानी बेहद चर्चित है।
7: मान सिंह जी, ये अमर सिंह है, महाराणा के पुत्र।
4: हमें आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई।
7: पता नहीं,
4: महाराणा स्वयं नहीं आए, हम तो बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
7: मानसिंह जी, महाराणा किसी कारणवश यहां नहीं आ रहे। आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कीजिए।
4: यह कैसा भोज है, हमें बुलाकर महाराणा खुद नहीं आए। इसमें मेरा ही नहीं बादशाह अकबर का भी अपमान है।
7: मानसिंह जी,
4: बस, महाराणा ने यह जानबूझकर किया है, अब इस अपमान का फैसला युद्ध भूमि में होगा।
7: मानसिंह जी, अगर ऐसा है तो आप युद्ध भूमि में अपने साथ शहंशाह अकबर को भी ले आइए।
4: अमर सिंह,
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
11: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
10: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
12: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
13: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
12: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8869-73।
14: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
10: कहाँ पर?
14: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
10: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
14: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
10: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
14: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
11: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
10: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
11: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
10: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
11: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
10: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
11: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
15: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
16: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
15: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
16: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
15: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
17: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
18: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
17: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
18: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
17: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
18: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
7: मान सिंह जी, ये अमर सिंह है, महाराणा के पुत्र।
4: हमें आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई।
7: पधारिए।
4: महाराणा स्वयं नहीं आए, हम तो बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
7: मानसिंह जी, महाराणा किसी कारणवश यहां नहीं आ रहे। आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कीजिए।
4: यह कैसा भोज है, हमें बुलाकर महाराणा खुद नहीं आए। इसमें मेरा ही नहीं बादशाह अकबर का भी अपमान है।
7: मानसिंह जी,
4: बस। महाराणा ने ये जानबूझकर किया है, अब इस अपमान का फैसला युद्ध भूमि में होगा।
7: मानसिंह जी, अगर ऐसा है तो आप युद्ध भूमि में अपने साथ शहंशाह अकबर को भी ले आइए।
4: अमर सिंह,
5: गुस्से से बौखलाए मान सिंह को मेवाड़ से लौटना पड़ा। मान सिंह से मिले बिना ही महाराणा प्रताप ने अपना रुख साफ कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी अकबर ने कुछ महीने बाद ही अहमदाबाद के राजा भगवंत दास को मेवाड़ भेजा। भगवंत दास को भी कोई सफलता नहीं मिली। आखिर में अकबर के ज्ञानी और अनुभवी सलाहकार टोडरमल महाराणा प्रताप के पास गए।
7: टोडरमल जी, मैं आपकी विद्वता का सम्मान करता हूँ, मैं आपको एक विशेष उपहार देना चाहता हूँ।
3: मेरी इच्छा है कि मेरा प्रिय हाथी उपहार स्वरूप आप अपने साथ ले जाएं।
19: मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, मैं आपके पास शहंशाह अकबर का दूत बनकर आया था एक वचन लेने के लिए। अब आपसे कोई उपहार स्वीकारना मेरे लिए उचित नहीं होगा महाराज, मुझे क्षमा कीजिए।
5: डोडरमल इस इरादे से आए थे कि महाराणा बिना किसी युद्ध के शहंशाह अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लें, मेवाड़ को मुगल सल्तनत का हिस्सा मान लें। अकबर की इस नीति के सामने कई राजपूत राजाओं ने हथियार डाल दिए थे, लेकिन महाराणा को यह मंजूर नहीं था। महाराणा प्रताप को वो चित्तौड़ फिर से हासिल करना था जिसकी जमीन पर बादशाह अकबर की सेना ने 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था।
20: आज मैंने आप सबको एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए बुलाया है, एक ऐसा उद्देश्य जो हिमालय से महान और समुद्र से ज्यादा गंभीर है। भाइयों आंख उठाकर देखो, क्या हम आदर्शों से भ्रष्ट, धर्म से पतित, मातृभूमि के हित से विमुख हो रहे लोगों को देखकर चुप रह सकते हैं?
21: नहीं।
20: क्या इस समय हमें अपने हाथ को बांध कर रखना चाहिए?
21: नहीं। नहीं।
20: भाइयों जिस तरह प्रलय की आग से एक पहाड़ घिर जाता है, उसी तरह आज मुगलों के साम्राज्य ने हमें घेर के रखा हुआ है, और हमारा अस्तित्व तब तक है जब तक हम स्वतंत्र हैं। मुगल हमें भी अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, क्या हमें उनकी गुलामी स्वीकार करनी चाहिए? तो फिर तैयार हो जाइए भाइयों, हम मुगलों को अपनी चमकती हुई तलवार का पानी दिखाएंगे। मेवाड़ का बच्चा बच्चा मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार है। और हां, जब तक हम मुगलों से चित्तौड़ वापस नहीं ले लेते, तब तक हम कोई भी उत्सव कोई भी त्योहार नहीं मनाएंगे। और ये मेरा प्रण है, चित्तौड़ को लिए बिना मैं अपने नख बाल नहीं काटूंगा, सोने चांदी के बर्तन से नहीं खाऊंगा, और जिन लोगों ने चित्तौड़ के लिए अपना खून बहाया है, जब तक उस खून का प्रतिशोध नहीं ले लेते, तब तक मैं महल में भी नहीं रहूंगा, हर सुख और हर आराम से दूर रहूंगा। क्या मेरी इस प्रतिज्ञा से आप सबको कोई संदेह है?
6: प्रताप, एक ढंग से कह सकते हैं कि अपनी मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, परंतु उसकी स्वतंत्रता का आधार ज़्यादा व्यापक था। वो केवल अपने राज्य के लिए, अपने राजवंश के लिए या खुद के लिए नहीं लड़ रहा था, एक आदर्श उसने समाज को दिए, उन आदर्शों के लिए जो स्वतंत्रता, संस्कृति की सुरक्षा, ये महत्वपूर्ण है, तो उसमें दिया गया।
5: उधर बादशाह अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करने की तैयारी के लिए अजमेर पहुंच गया। साल 1576 के अप्रैल महीने में बादशाह अकबर ने अपनी शाही सेना को अजमेर से मांडलगढ़ के लिए भेजा। उसी शाही सेना का नेतृत्व कर रहा था 22 साल का सेनापति मान सिंह।
0: यानी अकबर ने क्षत्रिय राजा महाराणा प्रताप के खिलाफ एक क्षत्रिय को ही युद्ध के मैदान में उतारा था। यही नहीं, अकबर की शाही सेना में बड़ी संख्या में राजपूत सैनिक और मनसबदार थे। कहते हैं कि मांडलगढ़ में मानसिंह करीब 2 महीने तक डेरा डाले रहा, इस उम्मीद में कि महाराणा शाही सेना के दबाव में आकर बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मानसिंह शाही सेना के साथ मांडलगढ़ से गोगुंदा की तरफ रवाना हुए।
22: महाराज, सूचना मिली है मानसिंह शाही फौज को लेकर मांडलगढ़ से होता हुआ खंडोर गांव पहुंच चुका है।
23: महाराज, खबर यह भी है कि मानसिंह पड़ोस के जंगलों में भी शिकार कर चुका है। मानसिंह अगर फिर ऐसा करता है तो उसे जंगल में ही मार के गिराया जा सकता है।
24: धोखे से शत्रु पर वार करना यह हमारी परंपरा नहीं है। हम मुगलों का सामना करेंगे, हम अपने योद्धाओं के साथ कुंभलगढ़ की पहाड़ी से उतरकर लोहसिंह गांव में डेरा डालेंगे।
22: महाराज, ये जगह तो हल्दी घाटी के पास है, सिर्फ 7-8 मील दूर। यहाँ तो पहाड़ी सिकुड़ कर जाती है और आने जाने के लिए सिर्फ एक संकरा सा दर्रा है। यहाँ से सिर्फ 10-12 मीलों की दूरी पर तो मुगल सेना खड़ी है।
24: हाँ, हल्दी घाटी। हमारी सेना सबसे पहले घाटी के दर्रे के पास पहुंचेगी, उसके बाद हमारी सेना चार हिस्सों में बट जाएगी और घाटी के हर दिशा से हमारी सेना आगे बढ़ेगी। हमारा आक्रमण तीर कमान और तलवार के साथ तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारी सेना आसपास के पहाड़ों से दुश्मन पर पत्थर भी बरसाएगी।
5: महाराणा की रणनीति मुगल सेना को हल्दी घाटी के संकरे दर्रे में घेर कर उन पर आक्रमण करने की थी। इस समय मुगल और मेवाड़ सेना की क्षमता क्या थी, इस बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है। मुगल कालीन इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने दोनों तरफ की सेना का पूरा ब्यौरा दिया है। बदायूनी खुद वहां मुगलों की तरफ से युद्ध के लिए आया था।
6: साहित्य में 80,000 भी मिल जाएगी या अलग अलग मिल जाएगी, पर रफ एस्टिमेट और बदायूनी जो वहां पर मौजूद है उसको असेस करने के ये लगते हैं कि 5,000 और 3,000 का रेशियो या 8,000-5,000 के रेशियो से, 8,000 से मुगल सेना ज़्यादा नहीं थी और 5,000 से ज़्यादा अकबर की प्रताप की सेना ही नहीं थी।
0: 18 जून 1576 की सुबह मेवाड़ की सेना का एक हाथी मेवाड़ के झंडे के साथ अचानक हल्दी घाटी के उत्तरी पूर्वी मुहाने से बाहर निकला। दूसरी ओर सेना के एक बड़े हिस्से का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे। महाराणा अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। इससे पहले कि मुगल सेना आक्रमण के लिए मोर्चा संभालती, महाराणा प्रताप के योद्धा उन पर टूट पड़े।
5: हल्दी घाटी के संकरे दर्रे में किया गया ये आक्रमण इतना भयानक था कि मुगलों की सेना में हड़कंप मच गया। मुगल सेना के कुछ दस्ते तो ऐसे भागे कि बनास नदी के तट से 10-12 मील आगे चले गए। लगभग 3 घंटे की लड़ाई में महाराणा के योद्धाओं ने मुगल सेना के हरावल दस्ता यानी अग्रिम पंक्ति को ध्वस्त कर दिया।
6: अगर वापस बदायूनी को जिक्र करूं तो युद्ध का पहला आक्रमण इतना तेजी से हुआ कि खुद वो मुस्लिम इतिहासकार कहता है कि सेनाएं, मुगल सेनाएं छिन्न भिन्न हो गई और बनास नदी के दूर जा कर के, मतलब 10-15 किलोमीटर दूर तक भग गई। प्रताप के आक्रमण का भी असर वो बताता है कि हमारी इतनी भगदड़ मिल गई कि उसको पता ही नहीं लगा कि दोस्त राजपूत कौन है, दुश्मन राजपूत कौन है, दोनों की एक ही वेशभूषा होने से।
5: बनास नदी के तट पर खमनोर और भागल गांवों के बीच में रक्त तलाई नाम की एक जगह है। कहते हैं यहां भागती हुई मुगल सेना फिर से लौटी और उनका मेवाड़ के योद्धाओं से ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि वहां की जमीन खून से लाल हो गई थी। दोनों तरफ की सेना में राजपूत सैनिक बड़ी संख्या में थे। जाहिर है इस युद्ध की कहानी राजपूत सैनिकों के लहू से लिखी जा रही थी।
11: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
11: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
11: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस, और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
10: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
14: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
13: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
14: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
13: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
14: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
25: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
13: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
26: युद्ध के दौरान जो रॉयल फोर्सेस है, मुगल लोग पूछते हैं कि साहब हमें ये बताइए, बड़ी मुश्किल आ रही है कि इतनी दुर्धर्षता से ये कछुआ है और बाकी लोग इनसे लड़ रहे हैं जो राणा प्रताप के पक्ष से, तो कौन सा राजपूत तो हमारा है मानसिंह वाला और कौन सा इनका, हमें मुश्किल हो रही है किसे किधर तीर चलाएं। बोले किधर भी तीर चलाओ चलाओ, जो भी मरेगा मरेगा तो काफिर।
0: युद्ध के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब महाराणा का सामना मानसिंह से हो गया। मानसिंह एक हाथी पर सवार था जबकि महाराणा अपने प्रिय घोड़े चेतक पर। कहते हैं कि जैसे ही मानसिंह सामने आया, चेतक ने अचानक अपने अगले दो पैर हवा में उठा दिए और मानसिंह के हाथी के सर पर वार किया। अगले ही पल महाराणा ने अपने भाले से मानसिंह पर आक्रमण किया। मानसिंह ने झुककर किसी तरह से खुद को बचाया, लेकिन उसकी तलवार के वार से चेतक का पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। चेतक के घायल होने से महाराणा के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। दुश्मनों से घिरे महाराणा अब क्या करते? इसी बीच छाला बीदा नाम का एक योद्धा महाराणा की मदद के लिए आगे आया।
19: महाराज, महाराज, आपका घोड़ा चेतक बुरी तरह से घायल हो चुका है। महाराज, आप चेतक को लेकर जाइए। महाराज, हम आखिरी सांस तक लोहा लेते रहेंगे। महाराज, आप जाइए। महाराज,
5: झालाबीदा ने मुगल सैनिकों को भ्रम में रखने के लिए महाराणा का राजकीय छत्र ले लिया था। ऐसा करने से मुगल सैनिक झाला को ही महाराणा समझ बैठे। झाला काफी देर तक बहादुरी से लड़ता रहा और आखिर में वो महाराणा और मेवाड़ के लिए कुर्बान हो गया। बलिदान चेतक घोड़े ने भी दिया, जिसने घायल अवस्था में भी महाराणा का साथ देते हुए दम तोड़ दिया। कहते हैं इस मुश्किल घड़ी में ही महाराणा की मुलाकात अपने भाई शक्ति सिंह से हुई। शक्ति सिंह मुगलों की ओर से युद्ध में शामिल था।
3: शक्ति सिंह तुम यहां
4: राणा? मुझे क्षमा कर दीजिए राणा, मेवाड़ के लिए सैकड़ों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, यहां तक कि आपके घोड़े चेतक ने भी स्वयं मृत्यु का वरण करके अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, और एक मैं हूं जो मुगलों के साथ मिलकर अपने ही लोगों का वध करता रहा। भूल गया था मैं अपनी मातृभूमि को और अपने कर्तव्यों को राणा। क्षमा कर दो मुझे राणा, क्षमा कर दो मुझे राणा, क्षमा कर दो क्षमा कर दो मुझे।
0: हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा के शौर्य, साहस और उनकी तलवार की चमक ने पूरे भारत को चकाचौंध कर दिया। मुगल बादशाह अकबर की फौज को भारत में कड़ी टक्कर मिली थी। एक छोटे से मेवाड़ राज्य ने पहली बार विशाल मुगल साम्राज्य को आईना दिखा दिया था। मुगल सेना ना तो महाराणा प्रताप को मार पाई, ना ही उन्हें बंदी बना सकी। बादशाह अकबर मेवाड़ की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए थे। कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम से अकबर इतना निराश था, इतने गुस्से में था कि उसने मानसिंह के दरबार में आने पर पाबंदी लगा दी।
7: अकबर अपने मिशन में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो प्रताप वापस अपनी एक नई राजधानी नहीं बना पाते। इसका मतलब है कि स्थानीय सरदारों का और स्थानीय लोगों का उनके प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास था और वो उनके साथ जुड़े रहना चाहते थे। निश्चित तौर पर भीलों का भी उसमें हाथ है, जो सेठ साहूकार हैं उनका हाथ है, और जो वापस उन्होंने अपना रिवाइव करके एक नई राजधानी बताई, वही एक ऐसे एकमात्र जो है कहा जा सकता है कि अकबर को उन्होंने जवाब दिया कि अगर तुम इस मतलब मैं जो है अभी भी तुम्हारे अधीन नहीं।
5: हल्दी घाटी के युद्ध क्षेत्र से लौटकर महाराणा ने मुगल सेना के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। अब महाराणा और उनके भील सैनिक अचानक किसी भी वक्त दुश्मन पर हमला करने लगे। इस गुरिल्ला युद्ध से अकबर की सेना इतनी भयभीत हो गई कि उन्होंने कई जगह रास्ते बंद कर दिए, कई नगरों में ऊंची दीवारें खड़ी कर दी।
6: बिल्कुल वो प्रिजनर्स के ढंग से मानसिंह की सेनाएं वहां पर हो गई। भूखे मरने की नौबत आ गई। क्यों कि बाहर से सारा रसद मार्ग भीलू राणा के सेनाओं ने, सैनिकों ने बिल्कुल जिस भील जाति के लोग थे प्रमुख रूप से, उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए।
15: अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो नान्यो सो अमर्यो चीख पड़े।
5: कहा जाता है कि महाराणा और उनके परिवार के लिए ये समय बहुत कठिन था। कई जगह ये कहानियां मिलती हैं कि महाराणा और उनके बच्चों को घास की रोटी तक खानी पड़ी। इसके बाद भी महाराणा और उनके सैनिकों ने मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।

0: इस बीच महाराणा ने सामंतों की मदद से मेवाड़ की बिखरी हुई ताकत को फिर से एकजुट करना शुरू कर दिया। महाराणा ने चावंड को नई राजधानी बनाया, जो उनके बाद भी 1615 तक मेवाड़ की राजधानी बना रहा। महाराणा प्रताप के जीवन का अंतिम 12 साल शांतिपूर्ण रहा।
1: कहा जाता है कि चावंड में धनुष को झुकाते हुए महाराणा को चोट लगी और उसके जख्म से ही महाराणा का देहांत हो गया। अकबर के दरबारी इतिहासकार अब्दुल फजल ने लिखा है कि महाराणा को उनके बेटे ने ही जहर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। इतिहासकार कर्नल टॉड लिखते हैं कि उनकी मृत्यु पिछौला झील के किनारे एक झोपड़ी में हुई थी। कहानी कई तरह की है, उनमें से ये भी एक कहानी है कि बादशाह अकबर को जो महाराणा के मौत की खबर मिली तो वो कुछ देर के लिए खामोश हो गए। अकबर की आंखें नम हो गई।
0: 1597 में अकबर जब लाहौर में था, तब उसे राणा प्रताप के मृत्यु की सूचना मिली। किताब महाराणा यश प्रकाश के मुताबिक अकबर दरबार में था जब उसे यह खबर दी गई।
2: तुरसागाड़ा, पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ ना।
3: यही बाण चौहान राम रावण उत्थप्यो, यही बाण चौहान करण सिर अर्जुन कप्यो, यही बाण चौहान शंभु त्रिपुरासुर संध्यो, यही बाण चौहान भ्रमण लक्ष्मण कर बंध्यो, ओ सो बाण आज तब कर चलो विरद सच्चो चवे, चौहान राज सांभर धनी मत चूके माटे तवे।
4: बादशाह सलामत।
2: क्या हुआ मानसिंह, कोई बहुत जरूरी बात कह रही है?
4: जी आलमपना, चावंड मेवाड़ से एक खास खबर है सरकार। मेवाड़ के महाराणा प्रताप का इंतकाल हो गया है।
5: और छंद गावन की मंजूरी मिले सरकार।
2: अब कुछ सुनने का मन नहीं है दुर्सा। पर फिर भी जो सुनाना चाहते हो सुनाओ।
3: अस लेंगो अणदाग पाग लेंगो अणनामी, गोआड़ा गवड़ाय जी को बहतो धुर कामी, नवरो जे नह गयो नगो आसन ता नवल्ली, नगो झरोखा हेठ जेठ दुनियाण दहल्ली, गहलो तराण जीति गयो दसन मूंद रसना डसी, निसास मूक भरिया नयन तो मृत साह प्रताप सी।
2: इसका मतलब क्या दूसरा?
5: हे गुहिलोत, राणा प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर शाह यानी सम्राट ने अपने दांतों के बीच जीभ दबाई और सांस छोड़कर आंसू टपकाए, क्योंकि तूने कभी भी अपने घोड़ों पर मुगलिया दाग नहीं लगने दिया, ना ही अपनी पगड़ी को किसी के आगे झुकाया। तेरी रानियां कभी नवरोजों पे नहीं गई, ना ही तू खुद कभी बादशाही डेरों पर खड़ा हुआ। तू कभी शाही झरोके के नीचे नहीं खड़ा रहा और तेरा रौब दुनिया पर गालिब रहा। मैं यही कहता हूं, तू सब तरह से जीत गया और बादशाह हार गया। बादशाह हार गया।
0: इस कहानी के मुताबिक महाराणा प्रताप के यशगान को सुनकर, उनकी प्रशंसा को सुनकर अकबर क्रोधित नहीं हुआ, उल्टे उसे इनाम दिया।
1: महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर की आंखें नम हुई हों या ना हुई हों, इतना तो तय है कि अकबर को चुनौती देने वालों में महाराणा प्रताप अव्वल थे। और यही वजह है कि आज हम उन्हें याद करते हैं, उनके बारे में बच्चों को बताते हैं, पढ़ाते हैं। महाराणा की जिंदगी हमें सीख देती है कि स्वाभिमान से भरी हुई छोटी जिंदगी कायरता से गुजारी हुई लंबी जिंदगी से कहीं बेहतर है। भारतवर्ष के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक ऐसे व्यक्ति की गाथा जिसके बादशाह ना बनने की कहानी को भारत का दुर्भाग्य माना जाता है। अगले एपिसोड में दारा शुको। नमस्कार।
0: भारतवर्ष महानायकों की गौरव गाथा अनुपम खेर के साथ।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ किले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें ने बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्ही से आंखें चार होती है, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वा। उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई।

0: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565965।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434।

0: 03-6200-42-34-03।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल

0: मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64498 पे।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा

0: रुपीज भी।
1: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के

0: पश्चिम आर आर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
1: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
2: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
1: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देख रेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
2: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97070065575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं,
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है।
12: ये आकाशवाणी पटना है, अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य के 10 लाख PPL परिवारों के घरों पर लगेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया निर्देश। पटना के IGIMS में आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा, 4 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत जल संसाधन विभाग की 3194 योजनाओं को मंजूरी दी। और प्रदेश के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। अब समाचार विस्तार से। राज्य के 10 लाख PPL परिवार के घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे, इससे उनके घरों में सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पदाधिकारियों को BPL परिवारों के लिए लागू कुटीर ज्योति योजना के उपभोक्ताओं के घरों में सोलर संयंत्र लगाने की योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में श्री चौधरी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर भी तेजी से काम करने और इसमें अधिक से अधिक घरों को शामिल करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। पटना स्थित IGIMS में आयुष्मान भारत योजना के तहत 45 लाख रुपए गबन का मामला सामने आया है। IGIMS के मीडिया प्रभारी डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा ने बताया कि काउंटर पर कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों ने रोगी के फर्जी दावों और नकली मेडिकल बिल जमा कर धोखाधड़ी की है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 4 आउटसोर्सिंग कर्मियों समेत अन्य पर शास्त्री नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। राज्य सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत जल संसाधन विभाग की 3194 योजनाओं को मंजूरी दी है। इस पर लगभग 220 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन योजनाओं से विभिन्न जिलों में नहर सफाई, जल निकासी और सिंचाई से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग और जल संसाधन विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें मनरेगा के अंतर्गत आवंटित राशि के प्रभावी उपयोग को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में नहरों और जल निकासी तंत्र की सफाई के माध्यम से सिंचाई क्षमता बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण कार्यों को गति देने पर बल दिया गया। राज्य सरकार के सभी अधिकारी और कर्मचारी सपरिवार प्रत्येक 3 महीने पर 2 दिन किसी पर्यटन स्थल पर प्रवास करेंगे। राज्य सरकार ने स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत सरकारी कर्मी अपने गृह जिले को छोड़कर किसी अन्य जिले में 2 दिन और 2 रात के लिए सपरिवार पर्यटन, इको टूरिज्म या ग्रामीण पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर पी राजेंद्र ने इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित सभी विभागीय प्रमुखों को दिशा निर्देश जारी किया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पेयजल संकट से निपटने और भूजल स्तर की निगरानी को लेकर पटना में हुई समीक्षा बैठक में श्री अमृत ने वर्तमान में बंद पड़े 86,679 चापाकलों की मरम्मत के काम में तेजी लाने को कहा। उन्होंने प्रत्येक प्रखंड में कार्यरत भ्रमणशील मरम्मत दल को पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने संभावित सुखाड़ को देखते हुए दक्षिण बिहार के जिलों पर नजर रखने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने शिवहर परिसदन में वन प्रमंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के साथ कृषि वानिकी योजना के 100% लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। राज्य के सभी पुलिस थाने अगले 3 महीने में राष्ट्रीय नेटवर्क इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़ जाएंगे। इससे सभी थाने, न्यायालय, जेल, FSL और अभियोजन प्रणाली का आपस में डेटा का आदान प्रदान आसानी से होगा। ADG आधुनिकीकरण अजिताभ कुमार ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी।
13: भारत सरकार की स्कीम है ICJS जिसे बोलते हैं, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब हम सभी थानों को और भी जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसमें और भी अंग हैं, जुडिशरी है, प्रिजंस हैं, FSL है, ये हम लोग सभी ऑर्गन्स एक साथ आपस में नेटवर्किंग से जुड़ रहे हैं और सभी ऑर्गन्स अपने अपने रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर रहे हैं। इससे बहुत फायदे हैं। आप लोग जानते हैं जितना ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगा, लोगों को उतना जल्दी न्याय मिलेगा, काम में उतनी तेजी आएगी। पहले जो समय लगता था, कोर्ट ने डायरी मांगा, डायरी आ रहा है, कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट मांगा, आ रहा है, अब सभी को रियल टाइम आपको अपलोड कर देना है और इससे वो जो डिलेज होते थे वो रुकेगी।
12: ADG ने बताया कि राज्य के 1212 थाने CCTV से लैस हो चुके हैं। बचे हुए 170 थानों में भी 3 महीने में CCTV लगा दिया जाएगा। एक थाना में औसतन 12 से 13 कैमरे लगे हैं जिनमें 18 महीने तक की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। यातायात नियमों के उल्लंघन की सूचना अब आम लोग भी सीधे परिवहन विभाग को दे सकेंगे। विभाग ने इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 9153971897 और ईमेल ID commandcontrolcenterbihar@gmail.com जारी किया है। प्रदेश के सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था होगी। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में 1942 मदरसों में स्मार्ट क्लास शुरू होगा। इसका उद्देश्य मदरसों को आधुनिक शैक्षणिक तकनीक से जोड़कर छात्रों की समग्र साक्षरता और डिजिटल कौशल को बढ़ाना है। सरकारी विद्यालय के 5वीं और 6वीं कक्षा के बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टी में समर कैंप लगेगा। इनमें भाषा और गणितीय दक्षता में अपेक्षाकृत कमजोर बच्चे मुख्य रूप से शामिल होंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि समर कैंप समुदाय आधारित होगा तथा प्रत्येक कैंप में 10 से 15 छात्र छात्राओं को शामिल किया जाएगा। चिन्हित बच्चों की संख्या और उनके निवास स्थान के आधार पर कैंप स्थल का चयन किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने 3 जून को होने वाली 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। बीपीएससी ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही परीक्षा की नई तिथि की घोषणा की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, शिवहर, वैशाली, बांका और भागलपुर समेत राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्व हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आंधी के चलते कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे आवागमन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। ओलावृष्टि के कारण खेतों में लगी फसल के साथ साथ आम और लीची की फसल को व्यापक नुकसान हुआ है। इधर मौसम विभाग ने आज भी राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है।
1: दिनांक 26 मई राज्य के अररिया, किशनगंज एवं सुपौल जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य भाग के जिलों कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया एवं सहरसा जिलों में कुछ स्थानों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर राज्य का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहतास के टेहरी में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो अब तक का 9वां अधिकतम तापमान है। औरंगाबाद का अधिकतम तापमान 44.5, कैमूर का 44.4, बक्सर का 43.1 और कयाजी का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। डेहरी, औरंगाबाद और कैमूर में लू की स्थिति बनी रही। विभाग ने कहा है कि राज्य के दक्षिणी हिस्सों में आज भी तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। भीषण गर्मी को देखते हुए शेखपुरा जिला प्रशासन ने 30 मई तक सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 8वीं कक्षा तक के वर्ग संचालन पर रोक लगा दी है। इधर बेगूसराय में 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे तक, जबकि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 11:30 बजे तक ही संचालित होंगी। स्वच्छता सर्वे के तहत केंद्रीय टीम ने पटना नगर निगम के वार्डों में नगर निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जांच शुरू कर दी है। कल नगर निगम के 5 अंचलों में केंद्रीय टीम पहुंची। यह टीम गंगा किनारे घाटों की स्वच्छता और सफाई के दावों की भी जांच करेगी। गया जी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू पेपर पांती मोहल्ला स्थित एक घर में औषधि विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी कर 50 लाख रुपए मूल्य की नकली और नशे की दवा के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर की अदालत ने चर्चित दीपक ठाकुर हत्याकांड में शशि मंडल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक पिकअप वैन से 428 किलो गांजा बरामद किया है। मौके से एक तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र से पुलिस ने ठग गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6,56,000 रुपए, सोने चांदी के आभूषण समेत कई अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। खगड़िया पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर बर्दह गांव से मिनीगन फैक्ट्री चलाने के आरोपी परवेज चांद को गिरफ्तार कर लिया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार बल।
2: खेल खबरों में शुरुआत आईपीएल के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा।
0: अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पिछले 11 दिनों में पेट्रोल 8 रुपए 12 पैसे और डीजल 7 रुपए 87 पैसे महंगा हुआ। दैनिक जागरण लिखता है, मैथिली को मातृभाषा विषय की मान्यता, सीएम ने जताया आभार। प्रभात खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखता है, एनटीए ने पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, भोजपुरी लोक गीतों के वैश्विक दूत भरत सिंह भारती समेत बिहार के 3 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, विधानमंडल सचिवालय से बस सेवा का शुभारंभ। आज अखबार लिखता है, विश्वविद्यालयों में होगी फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश की पढ़ाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के 10 लाख बीपीएल परिवारों के घरों पर लगेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया निर्देश। पटना के आईजीआईएमएस में आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा, 4 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत जल संसाधन विभाग की 3,194 योजनाओं को मंजूरी दी। और प्रदेश के उत्तरी और दक्षिण पूर्व हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
3: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
4: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042434। 6200042434। सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
10: कहाँ पर?
9: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
10: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
9: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
10: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
9: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
12: Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश को।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
2: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैम, आप लोग का क्या हाल चाल है? बढ़िया है
2: जी, बिल्कुल बढ़िया है। आप बताइए, आप कैसे हैं?
1: हम लोग भी ठीक है मैम, काम धंधा चल रहा है, इसी में टाइम निकाल कर थोड़ा सोचे कि आज दिन है तो कॉल कर लें।
2: जी जी, बिल्कुल बढ़िया सोचे। तो नाम बता दीजिए।
1: मैं संगम कुमार, ग्राम धनौती, पोस्ट कटिहार, थाना कटिहार, जिला गोपालगंज, बिहार से हूँ मैम। अभी तो मैं फिलहाल में महाराष्ट्र में हूँ, काम कर रहा हूँ, मुंबई हूँ। तो हम लोग क्या मोबाइल के माध्यम से रेडियो रिमझिम सुनता हूँ हम लोग।
2: अच्छा,
1: हम लोग कहीं भी रहते हैं तो एप्स है ना आप लोगों का जो, उसके माध्यम से हम लोग सारे कार्यक्रम का आनंद लेते रहते हैं, आपका काम भी करते रहते हैं हम लोग।
2: चलिए बढ़िया है। तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: मैम गुंजन सिंह का कोई भी गम का गाना भोजपुरी सुनवा दीजिए।
2: गुंजन सिंह का कोई भी गम का गाना भोजपुरी?
1: जी मैम। जी
2: जी, चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना अभी।
1: जी मैम, नमस्ते।
2: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चॉइस में कॉल किया।

0: नमस्कार सोनी जी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
0: एक बार और किए थे 5 मिनट पहले तो रिंग हुआ, उठाया नहीं यार।
1: ऐसा तो नहीं है, एक कॉल रिसीव किए थे लेकिन करते ही कट गया था।
0: धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं सहारनपुर
1: जी। कैसे हैं धर्मेंद्र जी?
0: बढ़िया है।
1: क्या हो रहा था अभी?
0: ड्यूटी में।
1: तो बता दीजिए गाना कौन सा सुनना है आपको?
0: कर्मा फिल्म में गाना सुनवा दीजिए, ए मोहब्बत
1: जी। और सुनवाना भी है?
0: रंजीत तिवारी है, पांडे जी है
1: जी,
0: शुभम है, और रेडियो इंजिन तो तक सुनेंगे सारे यार।
1: तो प्ले करेगा ना
0: जी?
1: जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे चॉइस में कॉल किया।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
3: ठक ठक
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
0: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
0: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
7: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
8: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
7: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
8: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
9: Now pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
11: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हाँ नमस्ते दीदी, हम माझा गढ़ मिसरौली से बोलता नहीं सिंधु देवी
13: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
12: जी जी
13: जी,
12: बोलिया तो सुनाए
13: सब बढ़िया, अपने को बताई कैसन बनी?
12: ठीक बनी सर।
13: आज गाना कौन सुने के बाद?
12: आज गाना सुने के बाद बहुत ढेर दिन पर हम फोन कर लो दीदी। आज गाना सुने के बाद जानता नहीं, जादूगर जादूगर जादू चला के।
13: अच्छा
12: हाँ, दुल्हन बनू मैं तेरी, कोई जगह गाना है।
13: जी जी, सुनवाना भी है।
12: आज सुनम सा हमने के हमारे दयादिन बड़ी ननद बनी, हम बनी पूरा हमारा फैमिली बनी सर।
13: तो प्ले करें?
12: जी दीदी,
13: बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं कॉल।
12: नमस्ते
13: नमस्ते।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्कार,
0: नाम बताइए अपना और कहाँ से?
1: गणेश कुमार मिश्रा, दिल्ली।
0: जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर।
1: हेलो
0: जी, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: गणेश कुमार मिश्रा, दिल्ली से।
0: अच्छा अच्छा, क्या हाल चाल है गणेश जी?
1: ठीक है जी, अपना सुनाइए।
0: हमारा बढ़िया है। कहाँ है, ड्यूटी में?
1: हाँ, ड्यूटी में है। आवाज नहीं आ रहा था क्या?
0: आ रहा था, हवा का आवाज ज्यादा आ रहा था।
1: अच्छा, चलिए और सब सुनाइए।
0: सब बढ़िया है, तो बता दीजिए आज गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: अब गाना तो एक भोजपुरी गजल है, नीरज मिश्रा का है, जान अखिया मत चुराओ।
0: जी,
1: यही तो सुनना है
0: और सुनवाना भी है।
1: रद्दी भैया भाभी और जितने रिमझिम श्रोता है सारे सुनेंगे।
0: ओके, चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चॉइस में कॉल किया।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
7: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
8: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
9: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
8: तो देर मत कीजिए,
9: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
8: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
9: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
8: श्री गोपाल मोटर्स, गोपाल

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: नमस्कार दीदी।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: हम साबिर परवाना बोल रहे हैं, नाहरमन टोला जिला मधुबनी बिहार से।
2: जी, क्या हाल चाल है?
1: बहुत बढ़िया दीदी, आप लोग का दुआ है, ठीक है, आप कैसे हैं?
2: तो क्या हो रहा था अभी?
1: साथी को कॉल लगा रहे थे।
2: तो गाना कौन सा सुनना है आज?
1: आज ताजमहल का गाना सुना दीजिए, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा।
2: जी जी, और गाना सुनवाना भी है
1: हमारे दोस्त अवलील अंसारी, प्रिंसिपल अकेला मनोहर लाल गांधी, रजनी सिंह चौहान जी हरदोई की, राजेंद्र यादव भारती जी एम उत्तर प्रदेश के, नाहर मंटोला के जाहिद अली, साहिद अली, साजिद अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली और कादिर अली को।
2: जी चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: मनीषा कुमारी तरिया सुंदर से।
1: जी कैसी है मनीषा जी?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी है?
1: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था?
0: कॉल लगा रही थी।
1: तो कॉल तो लग गया है, गाना कौन सा सुनना आज आपको बता दीजिए।
0: तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है ओ माँ।
1: जी, और सुनवाना भी है गाना?
0: मैम नेहा कक्कर के आवाज में सुनाइएगा।
1: जी
0: जी मैम, आपको और अपने भैया भाभी को।

0: दीदी को और छोटे भाई को, रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आरजे को।
1: चलिए तो प्ले करेगा ना आपकी?
0: जी मैम।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका माय चॉइस में कॉल के।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं, तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
2: और 9097160602।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: Now pick it up, pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
7: Hello.
6: Pick it up, pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
7: Hello.
8: Jab phone gende bajte hai to kehte hain hello.
7: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
8: Bhage bhage firte hain.
9: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: नमस्ते।
11: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टिमझिम 90.4 FM में।
10: जी हम छोटे गुड़िया बोल रहे हैं।
11: जी, हाल चल बा?
10: ठीक हुआ, आप बताए?
11: हम तो बढ़िया बा, क्या होता रहे अभी?
10: कुछ नहीं, सही बाबू के।
11: कौन गाना सुने के बाद?
10: मेरी जिंदगी है तू, यही वाला सुना दीजिए।
11: और सुनाना भी है?
10: हाँ।
11: चलिए तो प्ले करे गाना।
10: हाँ ठीक है, करी।
11: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है माई चॉइस में कॉल किया।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंझिम 90.4 FM।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: अमन कुमार ठाकुर से।
1: जी, कैसे हैं अमन जी?
0: ठीक है
1: जी। तो क्या हो रहा था अभी?
0: अभी घर पर बैठे फोन लगा रहे 11 बजे से, अभी लगा है। बताइए, आपको अभी बंद बता रहे, कब बीज बता रहे, कब 11:30 में होता है 1 घंटा। गाना सुना दीजिए करीना पांडे का, कोई
1: करीना पांडे का कोई भी गाना, और सुनवाना भी है
0: आपको जितने लोग सुन रहे हैं।
1: चलिए तो प्ले करेगा ना?
0: ठीक है
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97070657575।
4: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान, संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042434, 6200042434।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक,

0: लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10 बजे से 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: नमस्कार
4: सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी मैं निजामुद्दीन बोल रहा हूँ बिहार से।
4: जी क्या हाल चाल है?
5: बहुत अच्छा है, अपना सुनाइए सोनी जी।
4: हमारा भी बढ़िया है, क्या हो रहा था अभी?
5: ये हमारे तो भाई के शादी था, इसी में सऊदी अरब से आए हुए थे और फिर जाने वाले हैं, तो कोई अच्छा सा अपने फरमाइश का गाना सुना दीजिए। आज अपने फरमाइश का गाना सुनाइए, ठीक है?
4: जी, तो गाना तो सुना देंगे अपने पसंद से, हिंदी या भोजपुरी इतना तो बताइए।
5: हाँ, हिंदी में ही सुनाइएगा, पूरी नहीं, और पूरा ज्यादा पुराना भी और ज्यादा नया भी नहीं। आप अपने पसंद से बहुत अच्छे सुनाते हैं, कोई नया बात नहीं है। हम तो बराबर आपका रिमझिम प्रोग्राम सुनते रहते हैं, ठीक है? तो आप बजा दीजिएगा, ठीक है? और मैं अपने पूरे परिवार को सुनाना चाहता हूँ, रिमझिम परिवार को, ठीक है? चलिए सोनी जी, फिर आपसे बात होगी। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, सो मैं कॉल किया।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिटर्न में 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
0: मैं राजू बोल रहा हूँ, दादा नगर हवेली श्रीवास्तव से।
1: जी कैसे हैं?
0: बढ़िया हूँ, अपना बताइए।
1: हम भी बढ़िया है, क्या हो रहा था?
0: बस ऐसे ही मैं कार्ड लगाता हूँ, एक दिन लगाया तो सुन नहीं पाया था गाना।
1: कोई बात नहीं, आज बता दीजिए आज की गाने की सुनवाई।
0: हाँ तो मेरा तो भोजपुरी गाना सुनने का इंटरेस्ट रहता है। कौन सिंह का कोई भी गाना सुनवा दीजिए।
1: कौन सिंह का कोई भी गाना जी? चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
0: ठीक है, थैंक यू।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
6: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
2: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा

0: लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो,
4: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
3: हाँ जी
4: जी, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
3: महेश शर्मा, कालीकम से।
4: जी जी, कैसे हैं महेश जी?
3: बढ़िया है, आप लोग अपना कहिए मैडम।
4: हम भी बढ़िया है, क्या हो रहा था?
3: आज छुट्टी है, बहुत गर्मी है इधर में, आप लोग उधर में तो पूरा गर्मी होगा मैडम।
4: जी जी, गर्मी तो इधर भी बहुत है।
3: जी
4: जी,
3: तो अभी लोग गाना सुनना था।
4: जी बिल्कुल सुनाएंगे, बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको। आपकी आवाज कट रही है, एक बार और बताइए।
3: दिलवा ले जा रुमाल में।
4: दिलवा ले जा रुमाल में।
3: जी
4: जी, और सुनवाना भी है?
3: नहीं मैडम, कितना बजे?
4: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
3: कितना बजे सुनाएंगे मैडम?
4: 5 से 7 के बीच में कल में आएगा आपका।
3: आज नहीं?
4: नहीं आज नहीं।
3: ठीक है तो मैडम सुना दीजिए।
4: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: हाँ हेलो फरमाइश रंजीत में
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
0: जी। मोहम्मद सलाल अंसारी मझोलिया भारत बिहार से
1: जी।
0: जी मेरा अपना पैर हुआ और अपना बताया, पूरी टीम को बताया, कैसे हैं आप लोग?
1: हम लोग भी बढ़िया हैं, टीम भी बढ़िया है, आप बताइए।
0: अब जो क्या दुआएं मेरे साथ है तो मैं अच्छा हूँ और अब हो रही है, मेरा फरमाइश को पूरा किया जाए
1: जी। जी
0: प्रेम प्रोफ का गाना है ये, प्यार था या और था, ये प्यार था या कुछ और था, ना मुझे पता ना मुझे पता, ये निगाहों का ये खुशूर था। इसी गाना को प्ले
1: जी, और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
0: डेडिकेट पसंद करेंगे तो टाइम लगेगा, अभी मेरे उत्तर आधा मन मेरे दो बेटे का शादी था
1: जी जी,
0: और दोनों बेटा का शादी हूँ और थका हुआ हूँ, इसी में आपका प्रोग्राम ढूंढ रहा था
1: जी।
0: अभी मेरे सदा बंधु और चौदह बंधु लोग को और आप सबको मिलाते हुए मैं नमस्कार करता हूँ, मेरा फरमाइश पूरा किया जाए, धन्यवाद।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं चॉइस में कॉल किया।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9520374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
0: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
5: Now pick your phone up.
6: Hello.
5: Pick it up, pick it up.
6: Hello.
5: Now pick your phone up.

ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमा

0: इसको रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: खैरियत है सर?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए।
2: बढ़िया है ना, बढ़िया का काम है। सुबह 11 बजे से चैनल कर रहा।
1: जी जी,
2: लास्ट में आकर के लग गया।
1: चलिए फाइनली लग गया ना।
2: हाँ लग तो गया
1: जी।
2: हमको एक गाना सुना दीजिए।
1: जी बिल्कुल सुनवाएंगे, गाना बता दीजिए नाम गाने का।
2: मैं तो छोड़ चला बाबुल का देश, या के घर जाना।
1: अरे गाना सुनवाइएगा भी किसी को।
2: पहले तो आपको आपको तो सुनाना नहीं चाहिए, क्योंकि लगता नहीं है।
1: अच्छा अच्छा,
2: पहले आपको और उसके बाद जिम के जितना देश विदेश सुनने वाले हैं सबको।
1: ओके चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
2: हाँ कर दीजिए। कब सुनेंगे ये?
1: ये कल शाम को 5 से 7 के बीच में कभी भी आ सकता है।
2: ठीक है ठीक
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल के।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
4: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: सोनी मैम
1: जी, सोनी मैम बात कर रहे हैं, आप बताइए अपना नाम और कहाँ से?
2: संजय कुमार
1: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं संजय जी?
2: निखमपुर
1: जी। कैसे हैं?
2: ठीक है।
1: तो क्या हो रहा था?
2: कुछ नहीं, काम हो रहा है घर पे
1: जी। तो बता दीजिए, सब बढ़िया है, बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: मुझे गाना सुनना है नाम फिल्म का, बॉलीवुड का फिल्म है और संजय दत्त का है, कल तू चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा
1: जी। और सुनवाना भी है?
2: हाँ जी, सबसे पहले आपको हमारे गोपालगंज के निवासी है सबको।
1: ओके, चलिए तो प्ले करें।
2: ठीक है जी, थैंक यू,
1: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सो मैं कॉल किया।

0: दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माई चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाज़त और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए

0: डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
1: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
5: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
8: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
8: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क 99-393-65-930।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम के हाल चाल कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे समय 9:23 हो रहा है हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो बिल्कुल इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। इसके लिए नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने के फरमाइश करना है तो पुराने गाने के फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। ऐसा ना हो कि आप नए गाने के फरमाइश करें और हम गाने को देखते हुए आपकी मैसेज को शामिल करते हुए भी आपकी फरमाइश हम पूरी ना करें। तो आप लोग डायरेक्ट उस गाने के फरमाइश करें जिस गाने की फरमाइश आपसे मांगी जाती है, पुराने या 90s के। कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। तब तक अपना भी कार्यक्रम शुरू करें मैसेज टाइप करने का। और यहाँ पे पहला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है और लिखा गया है, हेलो अस्सलामुअलैकुम, क्या खैरियत है। तो बिल्कुल बढ़िया है। और इस मैसेज को करती हैं शबीना खातून फ्रॉम दुलिया से और कहती है कि आज मुझे एक सॉन्ग सुनना है, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, सुनाना चाहती हूँ आपको और रेडियो फ्रेंड्स। सबा अपी, रोशनी अपी, अफसाना अपी, साजिदा जी, नीसा जी, सोनी जी, शिल्पी जी, गुड़िया जी, आशा जी, हाजरा सिस्टर, खुशी जी, मनीषा जी, सविता जी, कमरान भैया, इरफान भैया, गुलाम हुसैन भाई, समीर भाई, दिलीप भैया, साहिल भाई, दीपक भाई, वरिंदर भैया, लवली भाभी, श्यावन शर्मा जी और जो छूट गए उन सभी को। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे और जो भी श्रोतागण इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं वो अभी टेक्स्ट मैसेज करें। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। जैसे ही आपके मैसेज हमारे पास पहुँचेगा वैसे आपकी फरमाइश हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।

सभी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं हम सभी रेडियो एमजीएम 94 एफएम पे शो चल रहा है एसएमएस फरमाइश। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, अभी टेक्स्ट मैसेज करें। मैसेज का नंबर है 7277-1665-96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करें तो पुराने गाने का फरमाइश करें या 90s के। यदि इस ऐसे गाने का फरमाइश करते हैं तो आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरा करने की फुल कोशिश रहेगी। और आगे मैसेज कुछ मैसेज पहुंचा हुआ है तो लिखा गया है कि नमस्कार सोनू भाई, बताए कैसे हैं? तो बिल्कुल बढ़िया है, कहते हैं कि हम भी जुड़ चुके हैं एमडी महमूद केरला से। तो बिल्कुल महमूद जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय हेलो प्रणाम सलाम, मेरे तरफ से प्यारे प्यारे लिसनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ और निशा भारती उज्जवलिया उचका गांव प्रखंड से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए। सॉन्ग है मुझको दफना कर वो जब, डेडिकेट करती हूँ सोनी मैम, श्रुति मैम, दिव्या मैम, निशा सिंह एंड निशा पांडे, सुधा सिस्टर, बतरदे वाली, रोशनी सिस्टर, शिल्पी सिस्टर, शाहिद अंसारी और शबनम सिद्दीकी, और मेरी पड़ोसन सुधा सिस्टर, राधा सिस्टर, और 90.4 एफएम सुनने वाले तमाम लिसनर को, और अभी फ़िलहाल सुन रहे हैं उन सभी को। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। फ़िलहाल आगे भी मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो हाय सर जी, नमस्कार सर जी, कैसे हैं सर जी? मैं प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से, और क्या मैं फरमाइश कर सकती हूँ? यदि आपकी फरमाइश पूरी नहीं हुई आज तो सप्ताह का पहला दिन है, बिल्कुल कर सकती हैं। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर नमस्कार, राधे राधे सर जी, मैं सुजीत कुमार बस्तरा राजा लालगंज मिर्ज़ापुर से, हीरो नंबर वन का टाइटल सॉन्ग। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने का फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है, और हमें लगता है कि सुजीत जी आपकी फरमाइश हम शुक्रवार को ही किए थे, तो थोड़ा सा सब्र करेंगे और दूसरों को भी मौका देंगे, क्योंकि अभी तो एक सप्ताह तो नहीं हुए, बस सप्ताह बदले हुए हैं। यदि सीट खाली रहेगा तो आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश निशा भारती की।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971602।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053969015 पे।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
3: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेम छिम 94.4 FM पे। सो चल रहा है SMS फरमाइश। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करें तो आप पुराने गाने के ही फरमाइश करें या 90s के गाने का फरमाइश करें। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है तो मैसेज को शामिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं, गाने को सुना जाए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू सो मच, आपको धन्यवाद। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे गाने के फरमाइश किया गया है प्रीति रैदास के तरफ से, देखेगा राजा ट्रेलर की पिक्चर दिखा दो। और आप लोग से तो डिमांड की जाती है, मांग की जाती है, आग्रह की जाती है कि पुराने गाने की फरमाइश करें, फिर भी आप लोग गाने की फरमाइश कर ही देते हैं। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करते हैं और आगे मिसेस जो भी इस कार्यक्रम में पहुँचेंगे उनकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश रहेगा। और सीटें खाली हैं तो आप लोग सुनना चाहते अपने पसंद के गाने तो अभी टेक्स्ट मैसेज करें 72 77 16 65 96 पे।

0: दिखा दूँ।
1: रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का समय जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। यदि आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज करने वाले हमारे श्रोतागण हैं सुजीत जी और इन्होंने गाने के फरमाइश किए हुए हैं हीरो नंबर वन का टाइटल ट्रैक, तो इनकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो हाय कैसे हैं, तो बिल्कुल बढ़िया है और आपको भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। मनीषा फ्रॉम अमो मौजम से आगे मैसेज पहुंचा हुआ है हेलो, तो आप कौन अपना परिचय ज़रूर दें और गाने का फरमाइश करना है तो बिल्कुल कर सकती हैं या कर सकते हैं, यदि आप नाम बताते हैं तो ही तो क्लियर हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश सुजीत जी की।

कमल के गाने सुनने थे हम सभी रेडियो एमजी 90.4 एफएम पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और आगे मैसेज पहुँचा लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका, आपको धन्यवाद है रेडियो एमजी सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, मैं अवधेश और मुझे गाना सुनना है। गाने का बोल दिया गया है दो दिल मिल रहे हैं कुमार शानू की आवाज में, और ये मैसेज धनबाद से करते हैं। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं, और आप इंजॉय करिए अपने गानों के साथ रेडियो एमजी 90.4 एफएम पे।

0: मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
5: कभी प्यारा सॉन्ग सुनने थे हम सभी रेडियो एमजी 94.4 FM पे, सोशल लाइफ SMS फरमाइश का आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे मैसेज पहुंचाने वाले हमारे श्रोतागण लिखे हुए हैं कि हेलो सर नमस्कार, मैं शिवांश चौधरी, लालगंज, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से, और मुझे गाना सुनना है तेरा गम अगर ना होता तो मैं शराब ना पीता। तो इनके गाने हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे मैसेज में लिखा गया है कि अगर या जुल्म, और इस मैसेज को पहुंचाने वाली श्रुति सिंह मुंबई से, और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हमें लगता है कि थोड़ी सी मैसेज टाइप की हैं तो इधर उधर हो गया है, तो थोड़ा सा सुधार कर ले, फिर हम आपकी मैसेज को फुल शामिल कर देंगे। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे शिवांश चौधरी जी गाने के फरमाइश किए हुए, तो इनकी गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रेमझम 94.4 FM पे।

कमल के संग रेडियो रेमजीएम 90.4 एफएम पे सुन रहे थे। अभी हम सभी और शो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का और आगे मैसेज और लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग सर जी, मजा आ गया। मैसेज करते हैं सुजीत जी और बिल्कुल, और आगे मैसेज ऐसे ही गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है और इस गाने के फरमाइश करते हैं अंकुश कुमार गोफला मठ से, और गाने का बोल देते हैं बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, और डेडिकेट करते हैं अभी रेडियो सुन रहे हैं उन सभी दोस्तों को। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं और दोनों एक से बढ़ के गाने के फरमाइश किए हैं, मतलब आप लोग तो सुना जाए अगले गाने के फरमाइश और इंजॉय किया जाए रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पे।

0: ये सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746861।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
9: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
10: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
11: रेडियो रंजीम 90.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और सोशल लाइफ में इस फरमाइश का, और दो गाने कमाल के रहे, और आगे मैसेज, कई मैसेज पहुंचे हुए, और आगे मैसेज में लिखा गया है कि धन्यवाद सर जी आपका, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और अरविंद शर्मा तरन रहा कुचायकुट से करते हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और आपकी फरमाइश है तो आपकी फरमाइश पूरा करेंगे। और आगे कुछ से मैसेज पहुंचे हुए हैं, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है सर हमारा, तो एक एक करके ये फरमाइश तो पूरी हो ही रही है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि आज सब सॉन्ग सुपर हिट रहा, बाय, गुड नाइट, और मैसेज करती हैं निशा भारती। और आगे बढ़ते हैं, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और लिखती हैं कि सयारा तू तो बदला नहीं है, श्रुति सिंह मुंबई से, और तो आपकी फरमाइश तो हम नहीं पूरी कर पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, अगले गाने की फरमाइश हम अरविंद शर्मा जी की पूरी करते हैं, और गाने की फरमाइश करते हैं बदला सरा जमाना बाबू, बदला सरा जमाना, सत्यनारायण बाबा का कथा में बजे फिल्मी गाना, बदला सरा जमाना बाबू, बदला सरा जमाना, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। ओहो, आज की मैसेज में करते हैं गाने के फरमाइश, और हम पहले के मैसेज देख रहे थे, आगे मैसेज आज पहुंचाए हुए हैं, गाने के फरमाइश करते हैं। आदमी मुसाफिर है, आते जाते रास्ते में यादें खो जाता है, तो चलिए देखते हैं आपकी फरमाइश, अगर हमें मिलता है तो आपकी फरमाइश पूरा करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, क्योंकि समय जो है समाप्ति का होने ही वाला है, और गाने के बाद से आगे मैसेज और गाने की फरमाइश पूरा करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत करीब आ चुके हैं समाप्ति के। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आप सब सुनते रहें, और यहाँ पे कई मैसेज हमारे पास पहुँच रहे हैं, सनी राज पटेल जी जुड़े हुए हैं, और बिल्कुल आप भी अंतिम गाने के साथ इंजॉय करें। फिलहाल हम निकलते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन, नमस्कार।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
5: क्यों, क्या हुआ है?
4: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
5: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
4: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का आधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम,
7: सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
8: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
8: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
8: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
10: तुमसा कोई दूसरा इस समीप पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-097-06-575।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: तू जो है
4: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
6: प्रसाद क्लिनिक,
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
12: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान,
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया

0: का पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, सुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एस पी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एस पी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 9097160002।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का

0: आधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल कमला राय कॉलेज रोड इंडियन गैस एजेंसी के बगल में गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने डॉक्टर कॉलोनी गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
2: यहाँ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क 99 393 65 930।

0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: का भाई, ते इतना खुश बड़े, तोरा कुछ पता नहीं है का?
4: काहे परेशान बड़े भाई?
3: अरे आज खुशी के शादी हो रहल बा।
4: भक
3: हाँ,
4: इका बोला तारे?
3: आ दुख के बात दी बा कि आजुए बारात आवता।
4: अच्छा,
3: चल जाई तोरा के छोड़ के।
4: उ तोरा भाई के मोहब्बत दिया, इतना आसानी से ना जाए दे।
5: देखते रहना, मैं आता हूँ। चाचा जी नमस्ते।
6: सबको देखते रहना, मैं आता हूँ।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
5: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए।

0: साड़ी सूट पीस लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
1: जी हाँ, कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
8: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003। 62042434003।

0: नजर मत लगा देना।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होई नू।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714 86164।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
11: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।

0: करते हो मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: उत्तर बिहार का गौरव,
7: सारण प्रमंडल की शान,
6: गोपालगंज की धड़कन
7: और अपने भाषा की पहचान,
6: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: सुनो दिल से।

0: Pilgrims begin main ritual of Hajj pilgrimage in Saudi Arabia. And in the IPL qualifier 1, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमरीका क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किये। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
4: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
1: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। यह ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरूआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
5: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूत पूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
6: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
8: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
7: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
8: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
7: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
8: जहां हर निवाला कहे वाह।
9: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
10: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
11: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
11: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
10: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
11: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18744।
12: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
13: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
12: सुनो दिल से।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: दिल कहे रेडियो।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714 86164।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9451211001।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कोइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत आनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
6: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0970-06-575।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99-393-65-930।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
2: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: 3303।
1: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
2: भरोसे वाले से लेंगे,
1: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
2: और कीमत भी।
1: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
3: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
4: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
5: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
6: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 85070-32042 पे। सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।
7: सुर में गाना सीखिए पाधानी सा ऐप के साथ, AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: हिली बाबू, खाली तू देख तो जा।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
4: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी। और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903-69015 पे।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87894 18744।
13: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
14: रेडियो रिमझिम,
13: सुनो दिल से।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779146164।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

समय क्योंकि छोड़ले नहीं के भैया, जे भी आयल बा ओकरा एक दिन जाए के पड़ल बा, के कैसे गइल बा ई मालूम नहीं खे। आई समय के फेर में कैसे समय धके दबोचता, सुनिए कहानी में।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87 894 18 744।
12: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
4: Now pick it up,
5: hello.
4: Now pick your phone up,
5: hello.
4: Pick it up,
5: hello.
4: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: जी मैडम, मुझे एक गाना सुनने के बाद।
1: गाना आपको सुना दिया जाएगा, आपका नाम बता सकते हैं आप?
2: महेश शर्मा, कालीपुंग।
1: जी, गाना कौन सा सुनना है? गाना
2: वो थारे बार का जो है ना, पुरनका फिल्म के पुरनका गाना गाता ना, जब से हुई शादी उस वाला गाना सुना दीजिए।
1: ओके, आपको गाना सुना दिया जाएगा।
2: जी मैडम, आज सुनाएंगे?
1: जी।
2: अरे आज कितने बजे सुनाएंगे?
1: गाना 5 बजे से सुनाया जाता है।
2: अच्छा जी,
1: ये गाना
2: आप किसको सुनाना? जी,
1: ये गाना आप किसको सुनाना चाहेंगे?
2: हाँ जी,
1: ये गाना आप किसको सुनाना चाहेंगे?
2: ना, हम अकेले सुनेंगे मैडम।
1: ओके
2: जी,
1: ठीक है, फिर आपको गाना सुना दिया जाएगा।
2: जी मैडम,
1: रेडियो रेंजी में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ
0: नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी हम गोपाल कोटवा से बोल रहे हैं, दीपक कुमार।
1: जी दीपक जी, क्या हाल है?
0: अरे बहुत बढ़िया है, आप अपना सुनाइए।
1: मेरा भी बढ़िया है। क्या हो रहा है?
0: हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं दीवार पर। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है।
1: गर्मी तो है बहुत ज्यादा है।
0: जी जी जी, और सब सुनाइए।
1: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
0: हमारा भी ठीक है और सब कोई का ठीक है समाचार।
1: कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
0: जो गाना सुना दीजिएगा कि जो प्यासे को पानी पिलाया नहीं, पाछे अमृत पिलाने से क्या फायदा।
1: और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते
0: हैं? आपको और आपके पूरा रिमझिम टीम को और जितने सुनने वाले सुनते हैं हम सबको।
1: हेलो जी, आपको ये गाना सुना दिया जाएगा।
0: कब मैंने कब सुनने को मिलेगा हमको?
1: 5 बजे रिकॉर्डिंग चलाया जाता है।
0: जी टाइम बताइए ना।
1: 5 बजे शाम को।
0: आज
1: पूरी कोशिश रहेगी।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: ओके, रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
0: जी जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
9: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
10: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
9: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
10: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
9: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
10: जहां हर निवाला कहे वाह।
11: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
12: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
13: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
0: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211-87952। नियम और शर्तें लागू।
14: Now pick your phone up.
15: Hello?
14: Pick it up, pick it up.
15: Hello?
14: Now pick your phone up.
15: Hello?
16: Jab phone gende bajte hai to kehte hai hello.
17: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेस्टोरेंट के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
19: नमस्ते मैडम।
18: नमस्ते, आपका नाम?
19: महंत कुमार।
18: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
19: बोल रहे नासिक से, अलकुटी।
18: जी क्या हाल है आपका?
19: जी मेरा बढ़िया, अपना सुनाइए।
18: मेरा भी ठीक है।
19: खाना ना हो गया मैडम आपका?
18: जी खाना हो गया है। आपका हो गया?
19: हाँ हमको हो गया है।
18: क्या हो रहा है अभी?
19: बस अभी हम लोग सो रहे हैं। इमली हाँ इमली, अभी हम लोग फोड़ रहे हैं।
18: फिर आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
19: माँ शेर वाली भक्ति गाना है
18: जी।
19: हाँ
18: और ये गाना आप किसको सुनाना चाहेंगे?
19: हाँ अभिषेक, ईश्वर, तिजनानंद श्री, महंत कुमार।
18: गाना आपको सुना दिया जाएगा रेडियो रंजन पे कॉल करने के लिए आपको धन्यवाद।
19: जी नमस्ते।

0: हेलो
1: सुन मैम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सत्रह काल कहाँ गुम हो गई थी? समुद्र की तरफ पानी
0: स्वागत है आपके रेडियो रेंजिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: झलक आपका कितना दिन हो गया बात करते हुए?
0: मैं सोनी मैम नहीं बोल रही हूँ। मैं सोनी मैम नहीं बोल रही हूँ
1: जी। आप कौन बोल रहे हैं?
0: भारती।
1: अच्छा जी, चलिए आपको भी हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग है, प्रणाम है, सत्रह काल है।
0: आपका नाम?
1: मैं लाल बहादुर प्रसाद, नादना पंचायती राज कल्याणपुर से।
0: ओके, क्या हाल है?
1: ठीक है। क्या आप बताए थे मैम अपना नाम?
0: भारती।
1: भारती
0: जी,
1: चलिए बहुत अच्छी बढ़िया नाम है।
0: फिर बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: गाना हमको सुना दीजिए, डकिया डाक लाया, डकिया डाक लाया, खुशियों का पैगाम लाया, कहीं हंसी लाया, कहीं गम लाया, ऐसा ही गाना है
0: जी। और ये गाना आप किसको सुनाना चाहेंगे?
1: हमारे जितने भी लोहिया स्वास्थ्य अभियान से जुड़े हैं, स्वच्छता कर्मी, पंचायती राज को, और हमारे तीन बाबू एम के प्रसाद इंजीनियर साहब, और हमारे पारस चौधरी अलुआई।
0: जब को ये गाना सुना दिया जाएगा
1: जी,
0: गाना आपको सुना दिया जाएगा रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए। आपका धन्यवाद।

0: दिया डाक लाया।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
3: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।
11: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
5: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
5: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने NH 27 बंजारी गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
12: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
13: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
12: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
14: Now pick it up, hello. Now pick your phone up,
15: hello.
14: Pick it up,
15: hello.
14: Now pick your phone up,
15: hello.
16: Jab phone ghinti bajti hai to kehte hai hello.
17: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो
19: हेलो
18: हाँ जी
19: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
18: जी
19: क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ?
18: जी आप आपका नाम ईश्वरी जी बदल कर देना चाहे बड़ा?
19: हाँ अभी फिलहाल वो नहीं है।
18: जी आपका शुभ नाम?
19: मेरा भारती।
18: जी जी जी
19: और नमस्ते। आपका?
18: जी पचपेरा से भोला जी बोलते हैं।
19: ओके भोला जी क्या हाल है?
18: बहुत बढ़िया है।
19: क्या हो रहा है?
18: इस बार आराम होगा, धूप में क्या होगा?
19: धूप तो बहुत ज्यादा है,
18: धूप तो बहुत तेज निकली है, लेकिन अब इस बार आराम होगा। सुबह शाम को काम होता है, इस बार आराम ही होगा। खाना खा लिया, नहा धोवा कर और उसके बाद आराम कर रहे हैं हम।
19: तो बढ़िया,
18: अपना खाना पीना हो गया?
19: जी हाँ, मेरा हो गया
18: जी। आज मोजरा एक सुनवा दीजिए।
19: मोजरा?
18: जी
19: आ दिया जाएगा
18: जी। मोजरा सुना, क्यामत करती है एक तो मोजरा है ना, उसी को देखिएगा, अगर मिल जाए तो उसी को सुनवा दीजिए।

0: हेलो
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगभूमि के कार्यक्रम
1: बालवी सुंदर को।
0: हेलो,
1: बोला कि बालवी बोल रहे सुंदर को
0: जी, बोलिए क्या हाल है आपका?
1: ठीक है, अपन बता।

0: मेरा ठीक है, क्या हो रहा है?
1: क्या हो रहा है? पेड़ के नीचे है।
0: पेड़ के नीचे धूप बहुत ज्यादा है।
1: जी धूप बहुत ज्यादा है।
0: ओके कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: नहीं ये पापा का पारी वाला।
0: क्या?
1: पापा का पारी वाला गाना।
0: जी
1: कौन सिंगर? जी ये
0: गाना आपको सुना दिया जाएगा।
1: जी अमन है पौने राहुल चाहिए बोलिए।
0: ओके
1: जी नमस्ते।
0: नमस्कार, रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
0: कहाँ पर?
1: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
0: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
1: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
0: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
0: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
0: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27, बंजारी, गोपालगंज।
0: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
9: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
10: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
9: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
8: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
11: Now pick your phone up.
12: Hello?
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello?
11: Now pick your phone up.
12: Hello?
13: The phone can be watched the head to get it.
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
16: जी हम बनारस से।
15: जी बोलिए,
12: क्या नाम है आपका?
16: जी जैनुल।
12: ओके, क्या हाल है? गाना आपको सुना दिया जाएगा, गाना बताइए कौन सा।
16: जी मूवी नजायस अजय देवगन का।
12: ओके, और गाना?
16: उसमें का वो गाना है लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है।
12: जी आपको गाना सुना दिया जाएगा।
16: कब प्ले होगा?
12: शाम को 5 बजे से चलता है।
16: आज होगा कल होगा?
12: पूरी कोशिश की जाएगी।
16: हम लोग वही बनाते साड़ियों का काम करते हैं, पावर लूम।
12: ओके,
16: और काम करते रहते हैं, रेडियो रिंजिंग सुनते रहते हैं।
12: रेडियो रिंजिंग सुनने के लिए आपका धन्यवाद।
16: ओके।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगकिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: तो गाना सुनना था।
0: गाना सुना दिया जाएगा। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुमन शेखर है, मैं तिरुपति परसवन्ना से बोल रहा हूँ
0: जी।
1: और गाना है लॉलीपॉप लागेलू पवन सिंह का, और मेरा दोस्त सब है धर्मेंद्र रंजन जी है
0: जी,
1: सब सब है, ये सब भी गाना सुनना चाह रहा है।
0: ओके, गाना सुना दिया जाएगा। गाना सुनते रहिए रेडियो रेंज से। कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बानी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे ना कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाई।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99393965930।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहां कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434068 पे। सुनिए सुनिए सुनिए,
11: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
11: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी, नमस्ते मैम।
13: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के हेलो माय चॉइस शो में। हेलो
14: जी मैम, मुझे एक गाना सुनना है।
13: जी बताएं।
14: मुझे एक गाना सुनना है, मुझसे शादी करो, सलमान खान का सॉन्ग है।
13: क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ?
14: जी, मेरा नाम मोहम्मद शमशेर आलम है।
13: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
14: हम गोपालगंज मौनिया चौक से बोल रहे हैं।
13: ओके, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी मैं सुधीर बोल रहा हूँ, जिम्मेवारी जिला देवर झारखंड से। मैम
0: जी कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक है मैम।
0: क्या हो रहा है?
1: खैर इससे ट्राई कर रहे थे मैम, लग नहीं रही थी, बंद थे क्या रिकॉर्डिंग?
0: हाँ बंद था, अभी तो लग
1: गया। आप कौन बोल रहे हैं मैम?
0: मैं भारती।
1: भारती जी जी, आप नए आए हैं ना?
0: हाँ
1: जी जी।
0: क्या हो रहा है?
1: वही ट्राई कर रहे थे, आज बहुत जल्दी लग गई, एक ही ट्राई
0: लग गया ना कॉल।
1: जी जी जी, नहीं तो 200-250 बार लगाते थे तब लगती थी।
0: आज एक बार में लग गया।
1: जी जी, आज एक बार में लग गई।
0: और सब बढ़िया?
1: जी बिल्कुल ठीक है मैम, आपके रेडियो रेंजिंग से पूरे टीम सर आप लोग सब ठीक है ना मैम?
0: जी हम सब ठीक है।
1: जी
0: तो आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: जी आज कोई दर्द भरा गाना सुना दीजिए ना मैम।
0: क्या हो गया है?
1: कोई थोड़ा हमारे साथ कुछ ट्रेजेडी हुई है समझे ना, इसलिए थोड़ा दर्द भरा दुखड़ा वाला गाना ही सुनना चाहते हैं। कुछ दिन पहले मेरे जीजाजी डेथ कर गए, उसके बाद एक महीने के बाद फिर मेरी बहन भी डेथ कर गई उसी शोक चिंता में। दुख हुआ जी।
0: तो आप गाना बता दी, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: जी मोहम्मद अजीज की आवाज में गीत है, दुनिया में कितना गम है, इस तरह के गीत के बोल हैं, मेरा गम कितना कम है।
0: कोई बात नहीं, होने को कोई टाल नहीं सकता।
1: जी जी, वो तो होने को तो कोई टाल नहीं सकते हैं, लेकिन आदमी में होता है ना कि इस तरह का हुआ था, ये हुआ था, कुछ न कुछ तो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं ना।
0: हाँ।
1: उनके उनके नसीब में जो लिखा है वही हुआ, हमारा आप नहीं टाल सकते हैं उसको।
0: जी आप खुश रहिए और गाना
1: जी जी
0: रहिए।
1: जी जी, जी मैम।
0: ओके, आपको गाना सुना दिया जाएगा रेडियो में कॉल करने के लिए आपको धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87894 18744।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 51 या 9797-06-575।
12: Now pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
12: Pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
14: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
15: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
13: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेजिन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
13: हाँ जी, कैसा हूँ जी?
7: मैं ठीक हूँ, आप अपना बताएं।
13: वो बढ़िया बने।
7: क्या नाम है आपका?
13: हाँ दिव्या जी।
7: नहीं, मेरा नाम भारती है।
13: अच्छा, तो आप नया रेजिन के हैं क्या?
7: जी
13: वही तो बोला कि नाम बताना पड़ रहा।
7: तो आप पुराने लिसनर हैं?
13: जी हमारा 14 साल हो गए।
7: वो ये बात मुझे नहीं मालूम थी।
13: सनी जी भी हमारे सामने आई, दिव्या जी भी हमारे सामने आई। सनी जी भी चल गई है ना?
7: हाँ, क्या हाल है?
13: ना बढ़िया है।
7: फिर क्या हो रहा है आजकल?
13: आजकल यही संग संग को लिखा रहा है
7: जी। क्या गाना सुनना चाहेंगे आप?
13: गाना सुनना चाहेंगे रितेश पांडे का, जाए शानदार ले वो खबरिया
7: जी। और ये गाना आप किसको सुनाना चाहेंगे?
13: जी अपने पुराने लिस्टनर जितने लोग है सब है, और सनी जी है, दिव्या जी है, तनुषु जी है, रेडियो रिमझिम का जितने परिवार सब है।
7: ओके, गाना आपको सुना दिया जाएगा। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
13: थैंक यू।

0: हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी स्वागत है। हमको एक गाना सुनना था।
0: गाना सुनाया दिया जाएगा। आप अपना नाम बता सकते हैं?
1: मेरा नाम अली अख्तर है
0: जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ऐसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, फिलहाल मैं कश्मीर से बात कर रहा
0: हूँ। ओके, क्या हाल है आपका?
1: बस दुआ है जी, अपना सुनाइए। आप ठीक है?
0: जी मैं ठीक हूँ। और सब बढ़िया?
1: जी जी बस आपकी दुआ है।
0: ये बता दे आपको क्या गाना सुनना है?
1: हमको एक कव्वाली सुनना है
0: जी।
1: कव्वाली का नाम है भर दो झोली मेरे आका, जो बजरंगी भाईजान का गाना।
0: ओके
1: जी,
0: आपको गाना सुना दिया जाएगा
1: जी। कब बजेगा
0: ये रिकॉर्डिंग? शाम को 5 बजे से बजता है
1: जी। आज बजेगा?
0: हम पूरी कोशिश की जाएगी
1: जी।
0: रेडियो रंजन में आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: सलाम वालेकुम।

जिसकी तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी, हमारे मुल्क में क्यों घुसाया, चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो उस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
9: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
10: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
12: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
13: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
12: आज ही संपर्क

0: करें 7388894700 या 9198886973।
1: तब भौजी आज सुबह से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: हेलो
7: मैडम,
8: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
7: हाँ जी, मैं मामूल अंसारी बोल रहा हूँ। और जो लाइव जो चलता है वो कब चलता है?
8: रिकॉर्डिंग है जो 5 बजे से चलता है शाम को।
7: गाना सुनवा सकते हैं क्या?
8: जी बिल्कुल, आप बताएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
7: हम बोल रहे हैं जयपुर से।
8: ओके,
7: और गाना सुनना है हमें तू का तीन, तेरा तीन का तीन।
8: सबको गाना सुना दिया जाएगा, शाम को 5 बजे से रिकॉर्डिंग चलता है। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो। हाँ,
0: हेलो, गुड
1: गुड मॉर्निंग। थैंक
0: मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
1: यू मैम।
0: आपका नाम? जी,
1: मैं अनिल बात कर रहा हूँ, छोटपुर से।
0: क्या हाल है अनिल जी?
1: बस बढ़िया।
0: क्या हो रहा है आजकल?
1: बस काम चल रहा है। आपका क्या नाम है मैम?
0: भारती।
1: आरती।
0: भारती
1: अच्छा, भारती
0: जी।
1: जी। तो ये सब आपका हो गया?
0: हाँ
1: अच्छा, चलिए, हम पुराने लिसनर हैं और उम्मीद है कि आपके साथ भी वही समन्वय रहेगा।
0: ओके, इसके लिए मैं
1: जी
0: आपकी आभारी रहूंगी। क्या
1: जी
0: सुनना चाहेंगे आप?
1: आज सुना दीजिए गाना मुझे। एक मोहम्मद रफी साहब का गाना है, ध्यान
0: जी
1: से उतर रहा है। 1 सेकेंड, 1 मिनट सोच के बताते हैं। अभी अभी थोड़ा सा समय दीजिए हमको।
0: ओके,
1: एक काम करिए ना, यादें नहीं आ रहा है, कोई भी गाना उनका सुना दीजिएगा।
0: ठीक है, आपको गाना सुना दिया जाएगा।
1: जी, थैंक यू मैम।
0: थैंक यू रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू।

0: श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
8: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
8: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
9: प्रसाद क्लिनिक,
10: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
9: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
10: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
11: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
11: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
12: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
13: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
12: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
13: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
12: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
14: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
15: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिनताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
14: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
16: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
14: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
16: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
14: और 90974602।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
8: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
8: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
9: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
9: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
10: एपिसोड 25 2-5।

प्रीति की सुंदर रीति का अनुपम उदाहरण है दूध और जल का मिलन। दूध में मिलकर जल भी दूध के भाव बिकने लगता है, किंतु कपट रूपी खटाई के पड़ते ही पानी दूध से एक बारगी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है, प्रेम रूपी स्वाद जाता रहता है। सती के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव से आतंकित होकर शिव जी से छिपाव किया और मिथ्या वचन कहे कि उन्होंने श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली, किंतु सर्वज्ञ शंकर ने सब कुछ जान लिया और सती के कपटपूर्ण व्यवहार के लिए उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया। उधर सती को अपनी करनी याद करके अत्यंत ग्लानि हुई। उन्होंने शिव का रुख पहचान लिया कि स्वामी ने उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया है। अपने पाप की प्रतीति होने पर सती से कुछ कहते नहीं बना, किंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आमे के समान जलने लगा। इधर शिव जी ने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार वट वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठकर अखंड समाधि लगा ली।

0: एडमिशन फ्री
1: कहाँ पर?
2: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
2: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
3: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
9: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
12: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
13: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
12: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
10: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
14: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
15: एपिसोड 26, 26।

सती ने महादेव से छल तो किया, किंतु उनके समाधि में चले जाने के बाद पश्चाताप की आग में स्वयं जलने लगी। शिव की समाधि का एक एक दिन सती के लिए एक एक युग के समान बीतने लगा। मन में ये सोच कि इस दारुण दुख के अथाह और अनंत सागर को कब पार कर सकेंगी। शंकर के विमुख हो जाने के बाद भी विधाता उन्हें क्यों जिला रहा है। विडंबना ये है कि आत्मग्लानी के भेद को किसी पर प्रकट भी नहीं कर सकती। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद शिव की समाधि टूटी। सती ने आकर उनके चरणों में सिर नवाया तो महादेव उन्हें आदर से पास बिठाकर हरि अवतार की कथाएं सुनाने लगे। उन्हीं दिनों सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापतियों का नायक बनाया। ऐसी प्रभुता का पद पाकर अभिमान किसे नहीं होता। दक्ष को भी अभिमान हुआ और उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी, जिसमें गंधर्व, किन्नर, शेषनाग, सिद्धों सहित सभी देवताओं को निमंत्रित किया।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 12 वर्ष किए पूरे। वरिष्ठ नेताओं ने की श्री मोदी के व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता की सराहना। केंद्र सरकार ने देश में घुसपैठ और अन्य कारणों से डेमोग्राफिक चेंज की समस्या से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव की घोषणा की। 18 जून को होगा मतदान। और मौसम विभाग ने आज पूर्णिया और किशनगंज जिले में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एनडीए के घटक दलों के नेताओं समेत विभिन्न राजनीतिक हस्तियों ने श्री मोदी को बधाई दी है। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को एक ऐतिहासिक यात्रा बताया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र और अंत्योदय के सर्वोच्च सिद्धांत के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नई दिशा दी है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का विमोचन किया। पुस्तक में श्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर निर्णय देश की प्रगति और विकास के लिए लिया है।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: सहकारिता मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में केंद्रीय कैबिनेट में सहयोगी रहे रामकृपाल यादव ने कहा कि श्री मोदी अद्भुत क्षमता के धनी हैं। श्री यादव ने कहा कि इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के निर्णयों से देश कठिन परिस्थितियों में विकास पथ पर अग्रसर रहा है।
2: कोरोना के काल से निकाल करके हिंदुस्तान की आवाम को आगे ले जाने का काम, पुनः अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत और क्षमता रखने का काम, ये मोदी के कुशल नेतृत्व का ही तो परिणाम है जो 12 साल का है। ये एक नहीं, अनेकों काम किया है। तो कई ऐसे इशू थे जिस इशू को उन्होंने रिजॉल्व किया है और देश आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा है। इसलिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, स्वस्थ रहें और देश के सेवा करते रहें।
0: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन देश की बड़ी ताकत है। आकाशवाणी से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पहली बार शपथ लेते हुए विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया था, उसी संकल्प को वे पूरा करने में जुटे हुए हैं।
3: 12 वर्ष हुए हैं, ठीक 12 वर्ष पूर्व 26 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से शपथ लिया था और उस शपथ को पूरा होते देख, उस संकल्प को पूरा होते देख हम आज देख रहे हैं। 12 वर्ष पूर्व हमारे देश को फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज हम टॉप 5 की ओर तीव्रता से अग्रसर होते दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से 12 वर्ष का जो वर्षगांठ है, ये हमें एक मौका देता है, समय देता है कि हम इसका मूल्यांकन करें और इन बातों को जन जन तक लेकर के जाएं।
0: केंद्र सरकार ने देश में जनसांख्यिकीय बदलाव और घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। श्री शाह ने बताया कि 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा लाल किले की प्राचीर से की थी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति देश भर में घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से जनसांख्यिकीय बदलाव का व्यापक मूल्यांकन करेगी और इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा कोटे से भरी जाने वाली बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए तिथि की घोषणा कर दी है। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार इन सीटों पर चुनाव 18 जून को कराए जाएंगे। इसी दिन शाम को मतगणना की जाएगी। विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को अधिसूचना जारी होगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि 11 जून नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है। गौरतलब है कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई विधान परिषद की 1 सीट के लिए उपचुनाव भी 18 जून को ही कराए जाने की घोषणा की है। जदयू की वरिष्ठ नेता और विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी ने दावा किया है कि विधान परिषद की सभी 10 सीटें एनडीए के खाते में आएंगी। पटना स्थित जदयू कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि संख्या बल और नैतिक बल दोनों एनडीए के पास है।
4: जिस तरह से हम लोग के एनडीए की गठबंधन का सरकार चल रहा है, जिस तरह से बंगाल का जो रिजल्ट आया, उसके आधार पर लगता है कि हम लोग 10 में 10 इसको ले लेंगे।
0: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि एनडीए के घटक दल जल्द ही उम्मीदवारों को लेकर अंतिम फैसला कर लेंगे और प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जाएगी।
5: एनडीए मिलकर जल्द ही अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और एनडीए एकजुट है और जल्द ही प्रत्याशियों की भी घोषणा पूरा एनडीए करेगा।
0: हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आगामी विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव के लिए 1 सीट की मांग की है। श्री मोझी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमको परिषद चुनाव में सीटें मिलने से गठबंधन को फायदा होगा।
6: हम कहेंगे कि अगर हमको एमएलसी का पद दिया जाता है, इससे हम एनडीए गठबंधन मजबूत होगा, हमारा जो दल है, हमारे लोग हैं, और आकर्षित होंगे और उससे एनडीए को फायदा होगा। इसीलिए हमारे हित में भी है, एनडीए के हित में भी है कि हमको एक एमएलसी का पद वो दें।
0: राजद की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल अपने समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। श्री सरावगी ने कहा कि प्रदेश की जनता परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति से ऊब चुकी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। सऊदी अरब में वार्षिक हज में आज अराफात का दिन है। इसे हज का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस्लामी कैलेंडर महीने जिलहिज के 9वें दिन आज दुनिया भर के लाखों हज यात्री मैदाने अराफात में जमा हैं और हज के मुख्य रस्म को पूरा कर रहे हैं। बिहार के 2552 श्रद्धालु हज यात्रा में शामिल हैं। सऊदी अरब में मौजूद भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि इस साल हज करने वाले 175,000 से ज्यादा भारतीय जायरीन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के कारण अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में अधिकतर स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात की परिस्थितियां बनी हुई हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग को छोड़कर अधिकांश स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्णिया और किशनगंज जिले में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
1: दिनांक 27 मई राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अररिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के मधेपुरा एवं पूर्णिया जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, शिवहर, वैशाली, बांका और भागलपुर जिले में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। हमारे भागलपुर संवाददाता ने बताया है कि आंधी के कारण अलीगंज स्थित आकाशवाणी का टावर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे प्रसारण प्रभावित हुआ है। हालांकि FM और न्यूज ऑन AIR ऐप से समाचारों और कार्यक्रमों का प्रसारण सुना जा रहा है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों की कई कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। एक रिपोर्ट।
2: रोजगार मेले का आयोजन 25 मई से शुरू हुआ है, जो 27 मई तक

0: हमें काफी अच्छा अनुभव होगा।
1: रोजगार मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों की विभिन्न कंपनियों के जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने से खुशी का माहौल है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से प्रियंका मिश्रा।
2: पटना ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित मेंस T20 ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। मोइनुल हक स्टेडियम में आज खेले गए फाइनल मुकाबले में पटना की टीम ने बेगूसराय को 23 रन से पराजित कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पीयूष सिंह के धुआंधार 92 रन की बदौलत पटना ने 8 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। जवाब में बेगूसराय की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 167 रन ही बना सकी। गंगा दशहरा के अवसर पर पटना के गांधी घाट पर नदी में स्नान करने के दौरान 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यह घटना दुखद है, ऐसी घटना फिर से ना हो इसके लिए घाट पर एक विशेष टीम तैनात कर दी गई है। भवन निर्माण मंत्री सह मधुबनी जिले की प्रभारी मंत्री लेसी सिंह ने आज DRDA सभागार में जिले में बाढ़ और सुखाड़ की चुनौतियों से निपटने के लिए पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। श्रीमती सिंह ने अधिकारियों को बाढ़ सुखाड़ की स्थिति में वैकल्पिक फसल योजना को लेकर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिलाधिकारी आनंद शर्मा, पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार समेत विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी मौजूद थे। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने इनरवा थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। थाना प्रभारी पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने 12 वर्ष पूरे किए। वरिष्ठ नेताओं ने की श्री मोदी के व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता की सराहना। केंद्र सरकार ने देश में घुसपैठ और अन्य कारणों से डेमोग्राफिक चेंज की समस्या से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव की घोषणा की। 18 जून को होगा मतदान। और मौसम विभाग ने आज पूर्णिया और किशनगंज जिले में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन केडिया लेन मेन रोड गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर पटना कलकत्ता लखनऊ बनारस चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62002434 03 62002434 03।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
7: यार, कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
0: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
1: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
0: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
1: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
0: जहां हर निवाला कहे वाह।

0: जी पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्हीं ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
2: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
1: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
2: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर है तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
5: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार की योजना डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अंबेडकर चेयर पद संख्या 1, डॉक्टरल अध्येता पद संख्या 2। योग्यता और अन्य शर्तों तथा वेतन आदि की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट jnujaipur.ac.in। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। निदेशक के निजी सचिव, मानव संसाधन अधिकारी, शैक्षणिक एवं छात्र मामलों के अधिकारी, सहायक सिस्टम विश्लेषक, सह सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मानव संसाधन एवं प्रशासन, लेखा सहायक और सहायक मानव संसाधन, इन सभी पदों के लिए एक एक रिक्तियां उपलब्ध हैं। कुछ अन्य पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद नाम है अनुसंधान अनुदान एवं परियोजना अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्लेसमेंट अधिकारी, सहायक विद्युत अभियंता और पुस्तकालय सहायक, इन सभी पदों के लिए भी एक एक रिक्तियां उपलब्ध हैं। आवेदन 15 मई 2026 से खुल चुका है और अंतिम तिथि रहेगी 8 जून 2026। योग्यता और अनुभव संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट देखिए। वेबसाइट है www.igidr.ac.in/careers। नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर में जूनियर कंसल्टेंट NHSL में 2 रिक्तियां उपलब्ध हैं। आयु सीमा 55 वर्ष, वेतन रहेगा 40,000 से 70,000 रुपए मासिक के बीच। आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण तथा टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए देखिए वेबसाइट www.nhsrcindia.org और www.devnetjobsindia.org। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 1 जून 2026। कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन एक अनुसूचित ए महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसका कॉरपोरेट मुख्यालय कोलकाता में है। ये विश्व का एकल सबसे बड़ा कोयला उत्पादक संस्थान है, जिसमें लगभग 2,12,000 कर्मी कार्यरत हैं। कोल इंडिया लिमिटेड भारत में कुल कोयला उत्पादन का लगभग 75% उत्पादित होता है। कोल इंडिया लिमिटेड आने वाले वर्षों में एकल उत्पाद से बहुआयामी व्यवसाय के क्षेत्र में रूपांतरित हो रहा है और इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड जो समान अवसर प्रदान करने वाला नियोक्ता है 9 परिक्षेत्रों अर्थात सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम, ENT, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, हिंदी एवं कंपनी सचिव पद के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से प्रबंधन प्रशिक्षुओं के रूप में प्रतिभाशाली युवा पेशेवरों को तलाश कर रहा है। ये कोल इंडिया लिमिटेड के रूपांतरण की यात्रा में योगदान करने का अनोखा मौका है, जिसके साथ साथ आप विश्व के ख्याति प्राप्त संस्थान में अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियों, ऑनलाइन आवेदन और पात्रता मानदंड, रिक्तियों की संख्या, ऊपरी आयु की सीमा, आवेदन शुल्क, आरक्षण एवं छूट, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कोल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.coalindia.in। वेबसाइट पर जाकर आप करियर विद CIL लिंक के तहत प्रकाशित विज्ञापन को विस्तार से देख सकते हैं। यदि आपके मन में अन्य कोई जिज्ञासा है तो लिखिए इस पते पर mtrecruitment.cil@coalindia.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
6: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
7: प्रसाद क्लिनिक।
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
9: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
8: क्यों, क्या हुआ है?
9: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
8: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
9: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
10: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
11: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
12: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
11: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
12: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
11: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
13: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
14: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
13: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
14: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
13: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
14: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा।
15: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
13: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रूपये से बढ़ाकर 1,580 रूपये किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की

0: घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
0: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
2: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बायपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्रमोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरूआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रूपये से बढ़ाकर 1,580 रूपये किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9.
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
8: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
8: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
8: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9956-59536 या 9956-57902।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञ
12: विशेषज्ञों द्वारा।
13: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
12: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
13: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
12: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
14: ठक ठक।
15: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
16: अच्छा मिला ही नहीं।
15: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
17: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
15: आप भी आए कमलश्री कमलश्री कमलश्री बारी मार्केट गोपालगंज।
17: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
18: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
19: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
18: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
19: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99 399 66 999।
15: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में?
17: क्यों क्या हुआ है?
15: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा साड़ी और गाउन दिलाओगे।
17: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
15: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
17: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
20: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। थावे मंदिर में हो रहे विकास कार्यों का आज जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। नशे के कारोबार में बरौली से एक नेता को सिवान एसटीएफ पुलिस ने किया गिरफ्तार। और एनडीपीएस के आरोपी को अदालत ने सुनाई 6 साल की सजा। बैकुंठपुर क्षेत्र में एक युवती से दुष्कर्म, पुलिस जांच में जुटी। टेक्निकल सेल के साथ जिला पदाधिकारी ने की बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने आज थामे दुर्गा मंदिर परिसर में पहुंचकर वहां हो रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। डीएम ने 29 करोड़ रुपए की लागत से चल रही विकास योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की और आगामी बुधवार को बिहार सरकार के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को तेज किया। निरीक्षण के दौरान सदर SDO अनिल कुमार, CO कुमारी रूपम शर्मा समेत कई विभागों के अधिकारी एवं कार्य एजेंसी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बताते चले कि हाल ही में थावे के विकास कार्यों की धीमी प्रगति पर पटना से मुख्य सचिव ने फटकार लगाई थी और इसी को लेकर जिला पदाधिकारी ने स्थल का निरीक्षण किया है और वहां कार्य करने वाले लोगों को आवश्यक निर्देश दिए हैं और प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के आगमन से पहले आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने का सख्त निर्देश भी दिया गया है। बरौली विधानसभा क्षेत्र से अपनी मां के नाम पर चुनाव लड़ने वाले एक क्षेत्रीय नेता को पुलिस ने नशे के कारोबार में गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह आरोपी श्याम भाई उर्फ श्याम पटेल है। जो पिछले विधानसभा चुनाव में बरौली विधानसभा से अपनी मां को चुनाव मैदान में उतारा था और यह लगातार जनसंपर्क कर जोर शोर से चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में लगा था। हालांकि इसमें बुरी तरह से इसकी हार हुई थी। अब बताया जा रहा है कि सिवान एसटीएफ पुलिस ने गोपालगंज पुलिस के सहयोग से छापेमारी करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस पर स्मैक का कारोबार करने का आरोप लगा है। सिवान पुलिस का कहना है कि सिवान के टॉप 10 स्मैक तस्करों में इसका नाम है। करीब आधा दर्जन मामले इस पर पहले से भी दर्ज है। राजनीति और समाज सेवा की आड़ में यह नशे का कारोबार चलाता था। पुलिस का कहना है कि अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है और फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर इससे आवश्यक पूछताछ की जा रही है और पुलिस इसे सख्त सजा दिलाने के लिए भी काम कर रही है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि देर रात दो युवकों ने युवती के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने गांव के ही दो युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। दोनों आरोपी चारदीवारी फांदकर घर में घुसे और घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सदर 2 SDPO राजेश कुमार ने बताया कि आरोपियों से गिरफ्तार कर उनसे आवश्यक पूछताछ की जा रही है और पीड़ित युवती का मेडिकल चेकअप इत्यादि करवाया जा रहा है और जल्द ही इसमें आधिकारिक बयान भी दिया जाएगा। उचका गांव थाना की पुलिस ने 2020 में NDPS एक्ट के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया था और इसी मामले में अदालत में सुनवाई चल रही थी। अब न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद इस कांड के आरोपी अब्बास अंसारी, पिता अलाउद्दीन अंसारी, साकिन कररिया ठकुराई, थाना फुलवरिया, जिला गोपालगंज को दोषी पाते हुए 6 वर्षों के कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त को सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक ललन द्विवेदी की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला स्तरीय तकनीकी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सड़क, भवन, जलापूर्ति, बिजली एवं अन्य विकास योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने अधूरे और लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश देते हुए धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। बताया जा रहा है कि गोपालगंज बाईपास, निरगंज भोरे सड़क चौड़ीकरण, पंचायत सरकार भवन एवं जलापूर्ति योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा है कि किसी भी हाल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान मौके पर ही कुछ मामलों का निपटारा भी किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनता की शिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान पुलिस की पहली प्राथमिकता है। जदयू पार्टी ने आने वाले चुनाव को लेकर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम शुरू किया है। जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल के नेतृत्व में जिला के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने बताया कि बैकुंठपुर से उमेश प्रसाद कुशवाहा, सिधवलिया से ब्रजेश कुमार उर्फ मुन्ना कुंवर, बरौली से प्रभाकर कुंवर उर्फ प्रभात सिंह, माझा से डॉक्टर योगेश प्रसाद, गोपालगंज सदर से धर्मराज प्रसाद सिंह, थावे से चंद्रभान सिंह उर्फ बुलेट सिंह, उचका गांव से सुविकास सिंह, कुचायकोट से मोहम्मद तौहीद, पंचदेवरी से अशोक कुमार गुप्ता, कटिया से नंदलाल मौर्या, भोरे से बिंदा सिंह कुशवाहा, विजयपुर से नितेंद्र राय, फुलवरिया से लाल बाबू राम, हथुआ से शशि भूषण प्रसाद, नगर पंचायत अध्यक्ष कटिया से सुनील प्रसाद मदेसिया और हथुआ नगर पंचायत से सतीश कुमार गिरी तथा मीरगंज नगर अध्यक्ष केसरी कुमार को मनोनीत किया गया है। सभी पदाधिकारियों ने पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लेते हुए पार्टी के प्रति अपना विश्वास जताया है और प्रदेश नेतृत्व तथा राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। कटिया थाना की पुलिस ने एक कांड में फरार चल रहे प्राथमिकी आरोपी हजरतुल्लाह खान उर्फ धनु को गिरफ्तार कर लिया। यह बड़हरिया जिला सिवान का रहने वाला बताया जा रहा है। इस पर पशु तस्करी का मामला पहले से दर्ज था। इधर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशंभरपुर थाना की पुलिस ने छापेमारी करते हुए 16 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसकी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बलिवन सागर चरमुहानी के पास यह कार्रवाई की। इस दौरान पकड़े गए आरोपी आशीष तिवारी पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आज इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मीरगंज थाना की पुलिस ने चोरी कांड में शामिल 4 अप्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने चोरी के मामले में जिन आरोपियों को पकड़ा है उसमें राजकुमार पिता प्रमोद दुबे साकिन गोरनुहा प्रांतर टोला थाना सनिचरी जिला बेतिया, उद्धव कुमार पिता राज कपूर प्रसाद यह मीरगंज का रहने वाला है और 2 महिला आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन चारों पर अब आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। 24 घंटों में अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार 37 आरोपियों को आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी अर्जुन राउत को 40 लीटर से अधिक स्प्रिट के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह आरोपी बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के चिउटहा गांव का रहने वाला है। इसके पास से पुलिस ने 40 लीटर स्प्रिट बरामद किया और इसे अब उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कटियां थाना की पुलिस ने भी 108 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब के साथ एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया है और 3 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अभियान चलाते हुए बगही बाजार स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास से इस आरोपी को पकड़ा और 3 मोटरसाइकिल जब्त किया गया। मोटरसाइकिल से 90 लीटर देशी शराब मिली है और 3 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है, जिसमें पुलिस अब आगे जांच पड़ताल कर रही है और फिलहाल विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्ले स्टोर से आप रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। थावे मंदिर में हो रहे विकास कार्यों का आज जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। नशे के कारोबार में बरौली से एक नेता को सिवान एसटीएफ पुलिस ने किया गिरफ्तार। और एनडीपीएस के आरोपी को अदालत ने सुनाई 6 साल की सजा। बैकुंठपुर क्षेत्र में एक युवती से दुष्कर्म, पुलिस जांच में जुटी। टेक्निकल सेल के साथ जिला पदाधिकारी ने की बैठक। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
21: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
21: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
21: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
22: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
23: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
24: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
21: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
25: सुनिए सुनिए सुनिए,
26: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
25: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
26: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
25: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
27: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
28: कहाँ पर?
27: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
28: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
27: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
28: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
27: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।
29: प्रसाद क्लिनिक।
30: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
29: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
30: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
31: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
32: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम क्या हाल चाल कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमछिम 94.4 FM पे। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो पुराने गाने का फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। और कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। तब तक अपना भी कार्यक्रम शुरू करें मैसेज टाइप करने का। और जो भी श्रोतागढ़ कुछ समय पहले मैसेज किए हुए हैं वो अपने मैसेज को रिपीट कर दे ताकि हमें पता चले कि आप सुन रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपके गाने हम सुनाएं और आप सुन ना पाए और फिर आप मैसेज करें कि मेरा गाना बज गया क्या। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप अपने मैसेज को रिपीट करें और हम आगे बढ़ते हैं और मैसेज को शामिल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सर, समीर आलम जंगलिया से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कहते हैं कि सॉन्ग सुनना है। ओह चलिए, आपका मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है और बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय हेलो सर, हम सफरोज अली आखिल टोला से और हमको गाना सुनना है, इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा। ओ बिल्कुल बात तो सही है और गाने के फरमाई से तो आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज करने वाले सोनू भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार। मुझे गाना सुनना है जिसका बोल है, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है। ओ क्या हो गया है जी। और मैसेज करते हैं दिलीप राम दिल्ली से और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सुनो भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है, सब मस्त है ना। और मैं रोहित देहरादून से। तो बिल्कुल मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हूं और आप भी बन रहे हैं हमारे साथ। और कहते हैं कि आज हमें भी गाना सुनना है, इश्क में एक पल की मैं जुदाई तेरी कसम, तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल। ओय ओय ओय। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो हाय सुनो भैया, मैं श्वेती शर्मा वृंदावन से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और आप भी बने रहे हमारे साथ। फिलहाल हम सफरोज अली के गाने के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और इंजॉय करते हैं इनके गाने के साथ हम सभी रेडियो रमछिम 94.4 FM पे। इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277-1665-96। ध्यान रखना कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो 90s के गाने या ओल्ड इज गोल्ड, मोहम्मद रफ़ी, लता जी और सारे पुराने गाने के फरमाइश करना है। आगे मैसेज कुछ पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं, और सॉरी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक्स सर, आपको गाना कैसा लगा? बिल्कुल बढ़िया और प्यारे गाने। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय हेलो सर, मैं लक्ष्मी कुमारी जादवपुर से, और मुझे सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने का फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है? तो बिल्कुल आपकी भी मैसेज हमारे पास पहुंची है रोहित जी, और हमने आपके मैसेज को शामिल कर दिया गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा भी बजा दीजिए। तो चलिए आपकी भी बजाएंगे, और इस मैसेज को करते हैं शमीर आलम जंगलिया से, और गाने के फरमाइश करते हैं। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। डेडिकेट इरफान भाई, कमरान भाई, गुलाम हुसैन, अहमद अली, साहिल भाई, सूफिया वसीम, सगुफा करीम, रुबीना नाज, शफाक, शाहजहाँ, हिना हजरा, अनामका गुड़िया, शबीता ब्यूटी, शबनम जरीन, शबनम सिद्दीकी, नीतू रोशनी, शबीना, शब्बा, आशा, निशा, तब्बू, साजिदा, संतरा और आपको। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करेंगे, और आगे भी मैसेज हमारे पास पहुंची है कई श्रोतागढ़ की, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज करते हैं दिलीप जी। तो बिल्कुल आपकी भी मैसेज हमारे पास पहुंच चुकी है, गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है, और कह रहे हैं कि सुन रहा हूँ। बिल्कुल सुनते रहिए। आगे मैसेज में लिखते हैं कि तेरी आरजू में दीवाना हो गए, तुझे अपना बताते बताते कहते हैं कि तेरी आरजू में दीवाना हो गए, तुझे अपना बनाते बनाते बेगाना हो गए। कर ले एक बार याद दिल से, तुझे तेरे दिल की आवाज़ सुने जवाने हो गए। सुनो भाई नमस्कार, इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा, सुपर सॉन्ग। बिल्कुल कहते हैं कि याद करोगे तो दिन से रात हो जाएगी, आईने को देखिए हमसे बात हो जाएगी। शिकवा ना करिए हमसे मिलने का, आंखें बंद कीजिए मुलाकात हो जाएगी। ओहो चलिए आपकी भी फरमाइश तो पूरा करेंगे। फिलहाल समीर आलम की फरमाइश को प्ले करते हैं, और सुना जाए इनके पसंद के गाने रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेमछेम 94.4 FM पे। शो चल रहा है SMS फरमाइश का, और यहाँ पे आगे कई मैसेज हमारे श्रोतागण की पहुँची है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सर जी, हमारा नाम है निशा और गाना सुनना है चलो ले चले तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। तो आपका स्वागत है, और गाने के फरमाइश तो पूरा तो नहीं कर पाएंगे, आप नए गाने के फरमाइश किए, पुराने गाने के फरमाइश करें बिल्कुल हम पूरा करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है नाइस रंग से, सफरोज अली मैसेज करते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज में लिखा गया है कि तेरे बिना तनहा हम रह लेंगे, तेरे बिना तनहा हम रह लेंगे, है दर्द के तूफानों को सहने लगे हैं, सॉरी, कहते हैं कि तेरे बिना तना हम रहने लगे हैं, दर्द के तूफानों को सहने लगे हैं, बदल गई है इस कदर मेरी जिंदगी, अस्क बनकर पलकों से बहने लगे हैं, सुनो भाई दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। समीर जी, प्यार मत करना दुख मिलता है, सुपर सॉन्ग आपकी। और मैसेज करते हैं दिलीप राम जी, और इनके तरफ से भी गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, और गाने के फरमाइश करते हैं पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, सुनाना चाहते हैं लिखे हुए हैं कि आपको, और सबीता जी, बबीता जी, सरफोदीन भाई, पंकज भाई, राघव भाई जी, गुड़िया जी, सफाक जी, काजल जी, संतरा जी, सलेहा जी, सचिदा जी, आशा जी, सबीना जी, सजदा जी, रानी जी, रोशनी जी, पायल जी, गुलफाम जी, नेहा जी, हिन्ना खान जी, शाहजहाँ जी, ब्यूटी परवीन, गट्टा शर्मा जी, सगीर अंसारी जी, मुकेश भाई जी, तूफानी जी, आजाद अंसारी जी, रोजादीन भाई, अफसर भाई, जावेद आलम जी, उपेंद्र भाई जी, अख्तरी जी, अहमद भाई, वीरेंद्र भैया जी, और सभी दोस्तों सखियों को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते रहें, इंजॉय करते रहें सभी दोस्तों और अपने सखियों के साथ।

ओहो, चलिए अच्छी बात है, तो सजाए भुगतना ही पड़ेगा। आगे मैसेज कई पहुँचे हुए हैं और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि मरने के बाद तो इंसान के पास यादों के सिवा कुछ नहीं रहता है, लेकिन जीते जी अपनी यादों की कद्र कर लो और हर रिश्ता एक याद बनकर रह जाएगा। उससे पहले जी भर के जी लो। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है। सुनो भाई, आज छत पे बैठकर सुन रहा हूँ प्रोग्राम, शुक्रिया सुनाने के लिए। चलिए, आपको धन्यवाद है रेडियो एमएम सुनने के लिए और एंजॉय करने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है प्लीज़ सर मेरा भी सॉन्ग बजा दीजिए। तो चलिए आपकी सॉन्ग बजाएंगे और इस मैसेज को करती हैं लक्ष्मी कुमारी यादवपुर से और गाने के बोल देती हैं डगर है मुश्किल सिस्टर निर्मला को सुनाना चाहती हूँ। तो इसी गाने के फरमाइश कल भी पहुँची हुई थी निर्मला की तरफ से, तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे कुछ मैसेज है तो मैसेज देख ले, फिर आगे मैसेज में लिखा गया है कि ये आंखें तरसती है तुम्हें देखने को, मेरे दिल को यूं ना सताया करो, और मैं तड़पता हूँ तुमसे मिलने को, मेरी जान कभी तो मिलने आया करो। ओहो, चलिए काफ़ी प्यारी लाइन। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि गाना जिसका मुझे था इंतज़ार, फिल्म डॉन नेम शगीर अंसारी फ्रॉम तेजपुर आसाम से, और सुनाना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे दिलीप राम जी को और कमरान बिरजू बरजू हजरा और शाहजहाँ को, बिल्कुल आपके भी गाने हम प्ले करेंगे शगीर अंसारी जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है मैसेज में, लिखा गया है कि हर दिल का राज होता है, हर दिल का राज होता है, हर बात का अलग अंदाज होता है, जब तक ना मिले बेवफाई की ठोकर, हर किसी को अपनी मोहब्बत पर नाज होता है। बड़रिया थाना क्षेत्र बालापुर से सनोज कुमार जी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही है और आप भी बन रहे हैं हमारे साथ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो एम छम 90.4 FM पे।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का समय जो है आगे निकल रहे हैं, और आगे कई गाने की फरमाइश हमारे पास अभी बाकी है। आगे मैसेज और आगे गाने की फरमाइश करते हैं रोहित जी, और कहते हैं कि सुनो भाई मैं भी लाइन में हूँ। तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और मैसेज में लिखा गया है कि क्या सर मेरा गाना नहीं बजेगा क्या? बिल्कुल बजेगा। और इस मैसेज को करते हैं शिवांश चौधरी जी, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि दुनिया चाहे हमें मिलने का मौका दे या ना दे, दुनिया चाहे हमें मिलने का मौका दे या ना दे, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो कुदरत भी हमारी मोहब्बत के सामने झुक जाएगी। शगीर भैया को नमस्कार, गाने में शामिल किए, दिल से शुक्रिया। और मैसेज करते हैं दिलीप जी, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर हमारा भी गाना बजा दीजिए। बिल्कुल लेके करके ये फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, और आपकी भी फरमाइश है तो पूरा करेंगे। आगे मैसेज है और दिलीप रोहित जी की, और इनकी फरमाइश को हम प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो MCM 94.4 FM पे।

सभी प्यारे संग रेडियो एमसीएम 94 एफएम पे सुन रहे हैं आप सब। शो चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे गाने की फरमाइश पूरी होगी शगीर अंसारी जी की। और यहाँ पे रोहित जी मैसेज करते हैं गाना बजाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनो भैया जी आपका, आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए और ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। और आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं शगीर अंसारी जी की और सुनते हैं इनके पसंद के गाने और इन्जॉय करते हैं हम सभी।

कमल के सॉन्ग रेडियो FM 4 पे सुन रहे थे हम सभी। और यहाँ पे आगे मैसेज और मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि अगर किसी को अपना दुख सुनाना हो तो मैं सुन सकता हूँ। मामूली दुख 250 रुपये, बड़ा दुख 500 रुपये और साथ में रोने के लिए 1000 रुपये। पड़ड़िया थाना क्षेत्र बालापुर से, तो बिल्कुल आपकी भी बुकिंग होगी और मैं बुकिंग करूँगा 1000 रुपये वाले फीस देकर, वो भी बारात के दिन। तो तैयार रहिएगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश हमारे पास है और इस मैसेज को करते हैं शिवांश चौधरी जी। गाने का बोल देते हैं, तू मेरी मैया मैं तेरा लाला। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। यह मैसेज बस्तरा राज लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पहुंचाया गया है। तो आगे देखे तो समय जो है समाप्ति के समीप है, तो अंतिम गाने इन्हीं के मानते हैं और इन्हीं के गाने के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। और जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं नाराज नहीं होना है, समय की कमी, समय होते तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना है। आप सब सुनते रहें रेडियो रेमझिम 90.4 FM, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेसवार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। यह बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanchu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
3: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियल थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months. हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल कैरिड बाय देम फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज. इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन विल रिक्वायर स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन विद सिविल अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन एट एवरी लेवल.
1: परिणाम लक्षी कार्यवाही ही भी हमने करनी पड़ेगी.
2: Mr. Shah said strict legal action should be taken against those involved. He stressed that since the drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of the State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. S. J. Shankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said that the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He also laid emphasis on zero tolerance for terrorism. Foreign Affairs Minister of Australia Penny Wong today called on Prime Minister Modi in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi discussed the growing India-Australia comprehensive strategic partnership in areas such as defence, trade, technology and ensuring supply chain resilience. The Prime Minister said India and Australia will work together to continue for the work for free, open, secure and prosperous Indo-Pacific. The Ministry of Railway has given its nod to start operations of the country's first hydrogen-powered 10-coach demo train. It will run at a maximum speed of 75 km per hour between Jind and Sonipat under the Northern Railway Zone. The train will use hydrogen fuel cells to

0: generate power instead of diesel or electricity based traction. The government has revised the minimum assured procurement price MAPP of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. In IPL cricket, Royal Challengers Bangalore have set a target of 255 runs against Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala. In reply, Gujarat Titans were 106 for 8 in 12.4 overs when reports last came in. And Gujarat Titans won the toss and elected to bat. And that's the end of the news bulletin.
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रमजिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रमजिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रमजिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।
1: प्रेजेंटेड बाय आदि शक्ति फिल्म्स।
2: बोलो कौन था
3: क्या
2: बोलो कौन था कल तेरे साड़ी पे जूस गिरा था।
3: हाँ गिरा था।
2: और तुम दोबारा नहाने गई थी।
3: हाँ बिल्कुल गई थी।
2: कल तेरे साड़ी पे जूस गिरा था और तुम दोबारा नहाने गई थी। कोई खिड़की से किचन में झांक रहा था, बोलो कौन था।
3: अरे

0: कौन था?
1: पता नहीं।
0: कौन था?
1: नहीं बताऊंगी।
0: तेरा भाई था?
1: नहीं।
0: तेरा दोस्त था?
1: नहीं।
0: तेरा यार था?
1: नहीं।
0: तेरा प्यार था?
1: नो।
0: तेरा भाई, तेरा दोस्त, तेरा यार, तेरा प्यार, बोलो कौन था?
1: पागल हो क्या?
0: बोलो कौन?

0: बोलो कौन था?
1: अरे मेरे बाप।
0: तेरा कजन था?
1: ना।
0: तेरा सजन था?
1: नो नो।
0: तेरा ददन था?
1: ये कौन है?
0: कि तेरा मदन था?
1: ये कौन है?
0: तेरा कजन, तेरा सजन, तेरा मदन, तेरा ददन, बोलो कौन था?
2: गर्दन न फाड़ो।
0: बोल कौन था?
1: चुप! मैं भी चिल्लाऊं क्या? यार प्यार पे भरोसा करो, कब से?

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो।
0: हाँ सोना।
1: हाँ कौन?
0: अवन तनी कोना।
1: अरे कौन बोल रहे हो?
0: अरे हम तार पूछू बेबी, नंबर भी डिलीट कर दियो क्या?
1: अरे नहीं नहीं
0: अवन, डीजे बजाता बस तारे आवाज सुनाते नहीं के।
1: बस 2 मिनट रुक जाना।
0: हेलो।
1: हाँ हेलो।
0: हाँ,

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: जी मैडम, ये वो गाना सुने के बाद
1: गाना आपको सुना दिया जाएगा। आपका नाम बता सकते हैं आप?
2: महेश शर्मा, कालीपुंग।
1: जी, गाना कौन सा सुनना है? गाना
2: वो थर्ड बार का जो है ना, पुरनका फिल्म के पुरनका गाना गाना ना, जब से हुई शादी उस वाला गाना सुना दीजिए।
1: ओके, आपको गाना सुना दिया जाएगा।
2: जी मैडम, आज सुनाएंगे?
1: जी।
2: अरे आज कितने बजे सुनाएंगे?
1: गाना 5 बजे से सुनाया जाता है।
2: अच्छा जी,
1: ये गाना आप
2: किसको बारे में? जी,
1: ये गाना आप किसको सुनाना चाहेंगे?
2: हाँ जी,
1: ये गाना आप किसको सुनाना चाहेंगे?
2: ना, हम अकेले सुनेंगे मैडम।
1: ओके
2: जी,
1: ठीक है, फिर आपको गाना सुना दिया जाएगा। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो।
0: हाँ
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी हम गोपाल कोटवा से बोल रहे हैं, दीपक कुमार।
0: जी दीपक जी, क्या हाल है?
1: अरे बहुत बढ़िया है, आप अपना सुनाइए।
0: मेरा भी बढ़िया है, क्या हो रहा है?
1: हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं दीवार पर। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है।
0: गर्मी तो है बहुत ज्यादा है।
1: जी जी जी, और सब सुनाइए।
0: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
1: हमारा भी ठीक है और सब कोई का ठीक है समाचार।
0: कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: जो गाना सुना दीजिएगा कि जो प्यासे को पानी पिलाया नहीं, पाछे अमृत पिलाने से क्या फायदा।
0: और ये गाना आप किस किस को सुनाना चाहते
1: हैं? आपको और आपके पूरा रिमझिम टीम को और जितने सुनने वाले अब सुनते हैं हम सबको।
0: हेलो जी, आपको ये गाना सुना दिया जाएगा।
1: और कब मैंने कब सुनने को मिलेगा हमको?
0: 5 बजे रिकॉर्डिंग चलाया जाता है
1: जी। टाइम बताइए ना।
0: 5 बजे शाम को
1: आ जाए,
0: पूरी कोशिश रहेगी।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: ओके, रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: जी जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: नमस्ते मैडम।
5: नमस्ते, आपका नाम?
6: महंत कुमार।
5: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
6: बोल रहे हैं नासिक से, अलकुर्सी।
5: जी, क्या हाल है आपका?
6: जी मेरा बढ़िया, अपना सुनाइए।
5: मेरा भी ठीक है।
6: खाना ना हो गया मैडम आपका?
5: जी खाना हो गया है। आपका हो गया?
6: हाँ हमको हो गया है।
5: क्या हो रहा है अभी?
6: बस अभी हम लोग सो रहे हैं। इमली इमली अभी हम लोग फोड़ रहे हैं।
5: फिर आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
6: माँ शेर वाली भक्ति गाना है
5: जी।
6: हाँ,
5: और ये गाना आप किसको सुनाना चाहेंगे?
6: हाँ, अभिषेक, ईश्वर, तिगनानंद, महान कुमार।
5: गाना आपको सुना दिया जाएगा रेडियो रिमझिम पे कॉल करने के लिए आपको धन्यवाद
6: जी। नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो सुन मैम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कहाँ घूम गई थी? समुद्र की तरफ पानी की
0: नमस्कार,
1: खोज
0: स्वागत
1: की थी यार।
0: है आपके रेडियो रेंजिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: झलक आपका कितने दिन हो गया बात करते हुए आज?
0: मैं सोनी मैम नहीं बोल रही हूँ। मैं सोनी मैम नहीं बोल रही हूँ
1: जी, आप कौन बोल रहे हैं?
0: भारती।
1: अच्छा जी, चलिए आपको भी हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग है, प्रणाम है, सत श्री अकाल है। कैसे
0: आपका
1: हैं?
0: नाम?
1: मैं लाल बहादुर प्रसाद, नादना पंचायती राज, कल्याणपुर से।
0: ओके, क्या हाल है?
1: ठीक है। क्या आप बताए थे मैम अपना नाम?
0: भारती
1: भारती।
0: जी,
1: चलिए बहुत अच्छी बढ़िया नाम है।
0: फिर बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: गाना हमको सुना दीजिए, डकिया डाक लाया, डकिया डाक लाया, खुशियों का पैगाम लाया, कहीं हंसी लाया, कहीं गम लाया, ऐसा ही गाना है।
0: जी, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहेंगे?
1: हमारे जितने भी लोहिया स्वास्थ्य अभियान से जुड़े हैं, स्वच्छता कर्मी, पंचायती राज को, और हमारे तीन बाबू एनके प्रसाद इंजीनियर साहब, और हमारे पारस चौधरी हलुआई।
0: आपको ये गाना सुना दिया जाएगा,
1: ये
0: गाना आपको सुना दिया जाएगा रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: The phone ring, they watch the head, don't get the head.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो।
5: हाँ जी,
6: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: जी,
6: क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ?
5: जी, आपका नाम ईश्वरी जी बदल कर बन चाहे बड़ा?
6: हाँ, अभी फिलहाल वो नहीं है।
5: जी, आपका शुभ नाम?
6: मेरा भारती।
5: जी जी जी,
6: और आपका?
5: जी, पचपेरा से भोला जी बोलते हैं।
6: ओके भोला जी, क्या हाल है?
5: बहुत बढ़िया है।
6: क्या हो रहा है?
5: ईश्वर आराम होगा, धूप में क्या होगा?
6: धूप तो बहुत ज्यादा है,
5: धूप तो बहुत तेज निकली है। लेकिन अब ईश्वर आराम होगा, सुबह शाम को काम होता है, ईश्वर आराम ही होगा। खाना खा लिया, नहा धोवा कर और उसके बाद आराम कर रहे हैं हम।
6: तो बढ़िया,
5: अपना खाना पीना हो गया?
6: जी हाँ, मेरा हो गया।
5: जी, आज मोजरा एक सुनवा दीजिए।
6: मोजरा?
5: जी
6: आ दिया जाएगा।
5: जी, मोजरा सुना, क्यामत करती है एक तो मोजरा है ना, उसी को देखिएगा, अगर मिल जाए तो उसी को सुनवा दीजिएगा।
6: और आप किसको सुनाना चाहेंगे?
5: जी,
6: किसको सुनाना चाहेंगे?
5: अरवा सुंदर करे, भाव सुंदर करे, सुने वाला तो बहुत आदमी जुड़ल रहे सफे सुनी।
6: जी, ये तो बात है, मतलब स्पेशली आप किसको सुनाना चाहेंगे?
5: जी हेलो।
6: हाँ
5: हाँ बोले
6: जी, आप स्पेशल में किसको सुनाना चाहेंगे?
5: अरवा कहते हैं अरवा सुंदर करे, आज जितना रेडियो जिंदगी में सभी जुड़ल बसे सबको सुनी, हम सुने। जी
6: ठीक है।
5: जी जी, नमस्कार।
6: नमस्कार
5: जी।

0: हेलो
1: जी नमस्ते। बाल
0: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगभूमि के कार्यक्रम हेलो
1: बाल
0: सोसाइटी
1: बा,
0: में।
1: बाल भी सुंदर तो
0: हेलो जी,
1: बोला कि बाल भी बोला है सुंदर तो ठीक
0: बोलिए क्या हाल है आपका।
1: है। अपन बताइए।
0: मेरा ठीक है, क्या हो रहा है।
1: बाल क्या हो रहा? पेड़ के नीचे है जी
0: पेड़ के नीचे धूप बहुत ज्यादा
1: जी
0: है।
1: जी धूप बहुत ज्यादा है।
0: ओके, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप।
1: नहीं ये पापा का पारी वाला,
0: क्या
1: पापा का पारी वाला गाना
0: जी।
1: कौन सिंगर जी ये
0: हाँ
1: सुन
0: हाँ
1: रहा है
0: गाना आपको सुना दिया जाएगा।
1: जी। अमन है अभी से फोन है राहुल अभी थे ये बोलिए
0: ओके
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्कार, रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग के कार्यक्रम हेलो लाइन चॉइस में।
3: जी हाँ, बनारस से।
2: जी बोलिए, क्या नाम है आपका?
3: जी जैनुल।
2: ओके, क्या हाल है? गाना आपको सुना दिया जाएगा, गाना बताइए कौन सा।
3: जी मूवी नजायस, अजय देवगन का।
2: ओके, और गाना?
3: उसमें का वो गाना है लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है।
2: जी आपको गाना सुना दिया जाएगा।
3: कब प्ले होगा?
2: शाम को 5 बजे से चलता है।
3: आज होगा कल होगा?
2: पूरी कोशिश की जाएगी।
3: हम लोग वही बनारस साड़ियों का काम करते हैं, पावर लूम।
2: ओके,
3: अपन काम करते रहते हैं, रेडियो रेंजिंग सुनते रहते हैं।
2: रेडियो रेंजिंग सुनने के लिए आपका धन्यवाद।
3: ओके।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगकिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: तो गाना सुनना था।
0: गाना सुना दिया जाएगा। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुमन शेखर है, मैं तिरुपति परसवन्ना से बोल रहा हूँ
0: जी।
1: और गाना है लॉलीपॉप लागेलू पवन सिंह का। और मेरा दोस्त सब है, धर्मेंद्र रंजन जी है,
0: जी
1: सब सब है, ये सब भी गाना सुनना चाह रहा है।
0: ओके, गाना सुना दिया जाएगा। गाना सुनते रहिए। रेडियो रेंज से कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
3: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 29 94 911। जी हाँ, 80 29 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
5: जी, नमस्ते मैम।
4: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के हेलो माय चॉइस शो में। हेलो
5: जी मैम, मुझे एक गाना सुनना है।
4: जी बताएं।
5: मुझे एक गाना सुनना है, मुझसे शादी करोगी, सलमान खान का सॉन्ग है।
4: क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ?
5: जी, मेरा नाम मोहम्मद शमशेर आलम है।
4: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
5: हम गोपालगंज मौनिया चौक से बोल रहे हैं।
4: ओके, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी मैं सुधीर कुल बोल रहा हूँ, फ्री जिम्मा जिला देवर झारखंड से। मैम
0: जी कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक है मैम।
0: क्या हो रहा है?
1: खैर इससे ट्राई कर रहे थे मैम, लग नहीं रही थी, बंद थे क्या रिकॉर्डिंग?
0: हाँ बंद था, अभी तो लग आया ना।
1: आप कौन बोल रहे हैं मैम?
0: मैं भारती।
1: भारती
0: जी
1: जी, आप नहीं आए हैं ना?
0: हाँ
1: जी जी।
0: क्या हो रहा है?
1: वही ट्राई कर रहे थे, आज बहुत जल्दी लग गई, देखिए ट्राई
0: लग गया ना कॉल?
1: जी जी जी, नहीं तो 200-250 बार लगाते थे तब लगती थी।
0: आज एक बार में लग गया?
1: जी जी आज एक बार में लग गई।
0: और सब बढ़िया?
1: जी बिल्कुल ठीक है मैम, आपके रेडियो रेंजिंग से पूरे टीम सर आप लोग सब ठीक है ना मैम?
0: जी हम सब ठीक हैं।
1: जी
0: तो
1: जी,
0: आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: जी आज कोई दर्द भरा गाना सुना दीजिए ना मैम।
0: क्या हो गया है?
1: कोई थोड़ा हमारे साथ कुछ ट्रेजिडी हुई है समझे ना, इसलिए थोड़ा दर्द भरा दुखड़ा वाला गाना ही सुनना चाहते हैं। कुछ दिन पहले मेरे जीजाजी डेथ कर गए, उसके बाद एक महीने के बाद फिर मेरी बहन भी डेथ कर गई उसी शोक चिंता में।
0: ओ, दुख हुआ।
1: दुख हुआ जी। तो
0: कोई नहीं, आप गाना बता दी, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: जी मोहम्मद अजीज की आवाज में गीत है दुनिया में कितना गम है, इस तरह के गीत के बोल हैं, मेरा गम कितना कम है।
0: कोई बात नहीं, होने को कोई टाल नहीं सकता।
1: जी जी, वो तो होने को तो कोई टाल नहीं सकते हैं, लेकिन आदमी में होता है ना कि इस तरह का हुआ था, ये हुआ था, कुछ न कुछ तो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं ना।
0: हाँ।
1: उनके उनके नसीब में जो लिखा है वही हुआ, हमारा आप नहीं टाल सकते हैं उसको।
0: जी आप खुश रहिए और गाना
1: जी
0: सुनते रहिए।
1: जी जी मैम।
0: ओके, आपको गाना सुना दिया जाएगा रेडियो रेंजिंग में कॉल करने के लिए आपको धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.

0: Now pick your phone up.
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो।
3: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेजिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
3: हाँ जी, जी
2: मैं ठीक हूँ, आप अपना बताएं।
3: बताए,
2: क्या नाम है आपका?
3: कौन, दिव्या जी?
2: नहीं, मेरा नाम भारती है।
3: अच्छा, तो आप नया नया जून के हैं क्या?
2: जी,
3: वही तो बोला कि नाम बताना पड़ रहा।
2: तो आप पुराने लिस्नर हैं?
3: जी, हमारा 14 साल हो गया।
2: वो ये बात मुझे नहीं मालूम थी।
3: सनी जी भी हमारे सामने आई, दिव्या जी भी हमारे सामने आई। सनी जी भी चल गई है ना?
2: हाँ, क्या हाल है?
3: सब बढ़िया है।
2: फिर क्या हो रहा है आजकल?
3: आजकल यही संग संग को लिखा रहा है।
2: जी, क्या गाना सुनना चाहेंगे आप?
3: गाना सुनना चाहेंगे रितेश पांडे का, जय शानदार ले वो खबरिया।
2: जी, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहेंगे?
3: जी, अपने पुराने लिस्नर जितने लोग हैं सब है, और सनी जी है, दिव्या जी है, सोनू सूद जी है, रेडियो रिमझिम का जितने परिवार सब है।
2: ओके, गाना आपको सुना दिया जाएगा। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
3: थैंक यू।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
0: जी स्वागत है, हमको एक गाना सुनना था।
1: गाना सुना दिया जाएगा, आप अपना नाम बता सकते हैं?
0: मेरा नाम अली अख्तर है।
1: जी आप कहाँ से बोल रहे हैं?
0: ऐसे मैं बिहार से रहने वाला हूँ, फिलहाल मैं कश्मीर से बात कर रहा
1: हूँ। ओके, क्या हाल है आपका?
0: बस दुआ है जी, अपना सुनाइए, आप ठीक है?
1: जी मैं ठीक हूँ, और सब बढ़िया।
0: जी जी बस आपकी दुआ है।
1: ये बता दे आपको क्या गाना सुनना है?
0: हमको एक कव्वाली सुनना है।
1: जी
0: कव्वाली का नाम है भर दो झोली मेरे आका, जो बजरंगी भाई जान का गाना।
1: ओके,
0: जी
1: आपको गाना सुना दिया जाएगा।
0: जी कब बजेगा
1: ये रिकॉर्डिंग? शाम को 5 बजे से बजता है
0: जी, आज बजेगा।
1: हम पूरी कोशिश की जाएगी
0: जी
1: रेडियो रिमझिम में आपका कॉल करने के लिए। धन्यवाद।
0: अस्सलाम वालेकुम।

जिसकी तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी? हमारे मुल्क में क्यों घुसाया? चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो उस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up, pick it up.
3: Hello.
2: Now pick your phone up.
3: Hello.
2: Pick it up, pick it up.
3: Hello.
2: Now pick your phone up.
3: Hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो।
7: हेलो,
6: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
7: गुड आफ्टरनून।
6: गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका?
7: मैं नूर आलम, जीरा दिल से।
6: जी, क्या हाल है?
7: ठीक है, अपना बताइए।
6: मैं भी ठीक हूँ। क्या हो रहा है?
7: अभी तो बैठा हूँ।
6: तो फिर बताइए क्या सुना दे आपको।
7: गीत सुनना है बेदर्दी मूवी का, एक दिन तो होनी थी मोहब्बत हो गई।
6: ओके, गाना आपको सुना दिया जाएगा।
7: ठीक है,
6: रेडियो रेंजिंग पे कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
7: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी नमस्ते। जी
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। जी आपका नाम?
1: जी मैं सोनी गोपालगंज से। आप कौन बोल रही हैं?
0: भारती।
1: तो मुझे सॉन्ग सुनना है।
0: जी बताएं।
1: गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है शान बताया। गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, यही वाला सॉन्ग सुनना है।
0: आप तो बहुत अच्छा गा लेती हैं।
1: जी अभी थोड़ा बहुत घबराहट हो रही है।
0: घबराहट करो कैसा, अच्छा तो गा रही हैं।
1: अच्छा दीदी आपका पहला दिन है क्या आज?
0: हाँ जी।
1: और फिर शो चलेगा योर वॉइस योर चॉइस का? योर वॉइस योर चॉइस का शो चलेगा?
0: हाँ
1: जी।
0: थैंक यू। गाना ये सुनाना चाहती हैं?
1: जी आपको और जितने सुनने वाले रेडियो रंजन सभी को।
0: जी आपको ये गाना सुना दिया जाएगा रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए। आपका धन्यवाद।
1: जी थैंक यू आपको मुझसे रिसीव करने के लिए।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो।
3: हेलो
2: जी मैडम,
3: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: हाँ जी, मैं मामू अंसारी बोल रहा हूँ। और ये जो लाइव जो चलता है वो कब चलता है?
3: रिकॉर्डिंग है जो 5 बजे से चलता है शाम को।
2: गाना सुनवा सकते हैं क्या?
3: जी बिल्कुल, आप बताएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: हम बोल रहे हैं जयपुर से।
3: ओके,
2: और गाना सुनना है हमें तू कातिल तेरा तिल कातिल।
3: आपको गाना सुना दिया जाएगा, शाम को 5 बजे से रिकॉर्डिंग चलता है। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो। हाँ,
0: हेलो, गुड
1: गुड मॉर्निंग। थैंक
0: मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
1: यू मैम।
0: आपका नाम जी?
1: मैं अनिल बात कर रहा हूँ, छोटपुर से।
0: क्या हाल है अनिल जी?
1: बस बढ़िया,
0: क्या हो रहा है आजकल? भारती?
1: बस काम चल रहा है। आपका क्या नाम है मैम? आरती।
0: भारती
1: अच्छा, भारती
0: जी।
1: जी। तो ये सब अब आपका हो गया?
0: हाँ
1: अच्छा, चलिए, हम पुराने लिसनर हैं और उम्मीद है कि आपके साथ भी वही समन्वय रहेगा।
0: ओके, इसके लिए मैं
1: जी
0: आपकी आभारी रहूंगी। क्या
1: जी
0: सुनना चाहेंगे आप?
1: आज सुना दीजिए गाना मुझे। एक मोहम्मद रफी साहब का गाना है,
0: जी
1: ध्यान से उतर रहा है। 1 सेकेंड, 1 मिनट सोच के बताते हैं। अभी अभी थोड़ा सा समय दीजिए हमको।
0: ओके,
1: एक काम करिए ना, यादें नहीं आ रहा है, कोई भी गाना उनका सुना दीजिएगा।
0: ठीक है, आपको गाना सुना दिया जाएगा।
1: जी, थैंक यू मैम।
0: थैंक यू रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू।

तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन। सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: एह उमर के उमंग में, सन्हिया के रंग में, अतु दूसरा के संग में जाता रहा। अतने अफसोस रही कि तू हमार ना भइल।
2: चुप रह, हमके माफ कर दो।

0: जाता नहीं जान, अपन ख्याल रखिया।
1: जान, अकेले खुश रहिया।
2: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हाय,

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

0: त्रिभुवन बिहारी। उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: राधा, ओ राधा।
2: क्या है? मैं नहीं बोलती।
1: देखो आज होली है, मुझे तंग क्यों कर रही हो?
2: जा, मैं नहीं सुनती।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: दिनेश जी पानीपत से। राधे राधे। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मेहनत का फल कब मिलेगा? मेहनत करने पर भी वो रिस्पेक्ट प्यार नहीं मिलता और परिवार में झगड़े होते हैं, तो कैसे मेहनत करें?
1: मेहनत किधर कर रहे हो? दिशा किधर है? क्या तुम्हारी मेहनत का स्वरूप है? बोलिए, किधर मेहनत कर रहे हो? तुम्हारी दिशा क्या है? अगर ऊसर को खोद करके उसमें बीज बो और खाद फैलाओ तो व्यर्थ ही जाएगा ना। भूमि उपजाऊ है कि नहीं देखना होगा, बीज घुना हुआ तो नहीं है देखना होगा, ऐसे ही देखना होता है। तुम्हारा कर्म क्या है? शास्त्र प्रमाणित है कि नहीं? तुम्हारा कर्म की दिशा किधर है? अधर्म युक्त कर्म है? मेहनत तो अधर्मी भी करता है ना, प्राण की बाजी लगाकर दूसरों के घर में कूदता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, हिंसा करता है, लेकिन उसका फल क्या मिलता है? दुर्गति उसकी। मेहनत तो एक भी करता है जो दूसरों की जान बचाता है, दूसरों की समस्याओं में खुद खड़ा होकर उसको झेलता है और दूसरों को सुख प्रदान करता है, धर्म से चलता है। दिशा क्या है आपकी मेहनत की? समझना होगा ना कि हमारी दिशा क्या है। हाँ, जैसे आप पढ़ाई लिखाई किए, बहुत मेहनत करके माता पिता ने आपको पढ़ाया, पर आपके पूर्व कर्मों का परिणाम आपको दुख भोगना है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, डिग्री आपके पास रहेगी, घूमो आप। क्यों? पूर्व में आपके ऐसे कर्म हुए हैं कि वर्तमान में तुम कोई चिदानंदमय पढ़ाई तो पढ़ी नहीं कि उसको नष्ट कर दे, है तो लौकिक पढ़ाई ना, तो लौकिक में उस लौकिक कर्म को नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं, अलौकिक कर्म में है। हाँ, लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए यदि तुम धर्म निष्ठा से चलकर माता पिता की वंदना करते

0: हुए, नाम जप करते हुए, यह है अलौकिक बाण जो नष्ट कर देगा उस कर्म को, वो आगे विधान बना देगा। प्रायः हमारे वर्तमान के भी कर्म धर्मयुक्त नहीं होते, पूर्व के कर्म, क्योंकि अगर बुद्धि शुद्ध होती तो इस जन्म के हमारे कर्म भागवतिक होते ना, तो नहीं हो रहे, वो तो पूर्व से भी ऐसा चला आ रहा है। अब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बड़ी मेहनत करके डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं कोई लाभ नहीं। हम व्यापार कर रहे हैं, हर जगह हानि होती चली जा रही, हम उन्नति के लिए हर प्रयास कर रहे हैं लेकिन निष्फल होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्व कर्म हमको भोगने हैं, हमको दर दर भटकना, ठोकरे खानी है, शरीर अस्वस्थ, माइंड अस्वस्थ, हर अव्यवस्था, ये हमारे कर्म का परिणाम होता है। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे देखे जाते हैं कि आपकी बुद्धि से भी कम है, मतलब उनमें उतनी चतुरता, इतनी पढ़ाई लिखाई, इतनी और बहुत वैभव ऐश्वर्य, और उनको सम्मान मिल रहा है, यद्यपि योग्य वर्तमान में उनकी योग्यता नहीं है, लेकिन उनको राजकुमार जैसा सुख मिल रहा है, सारी व्यवस्थाएं मिल रही, ये पूर्व का उनका सुकृत पुण्य काम कर रहा है, वो टिकेगा नहीं, जितने समय उनका पुण्य खत्म होगा फिर वहीं आ जाएंगे वो। एक कर्म केवल है जो टिकाऊ है और दोनों को संभाल सकता है, पाप और पुण्य दोनों को शासन में ले सकता है, वो है भगवान का नाम, वो है भगवान की शरणागति, भगवान का आश्रय। अगर इधर मेहनत को मिला लो तो बात बन जाए, जो भी कर्म किए जाए शास्त्र सम्मत हो, धर्मयुक्त हो, भगवान को अर्पित किया जाए और भगवान का नाम जब चलता रहे तो आप संसार पर क्या त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, परम सुख को प्राप्त हो जाएंगे ना? धर्म से चलने वाले का अंतिम परिणाम बहुत बढ़िया होता है, ऐसे थोड़ी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मेहनत सत्य है तो विफल नहीं होगी, और असत्य है तो उसका वर्तमान में करने पर भी दुख और परिणाम में दुख, देखना होगा आपकी दिशा क्या है, बस ये बात समझने, अंदर से समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो अध्यात्म में अगर बुद्धि नहीं लगी है तो सब नाटकबाजी है, सब ढोंग है। अध्यात्म के बिना, भगवान की शरणागति के बिना, वो खुद भगवान कह रहे हैं ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यंते माया मेताम तरंतिते, अभी कहते ना तुम्हारी सारी मेहनत सफल होगी, ऐसा करो ऐसा करो, अभी आप खुश हो जाओगे। और आपको सत्य बता रहे ना कि धर्म से चलो, भगवान नाम जप करो, माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, दूसरों का हित, कोई खास बात नहीं है, हाथ धर दो, फूल फल दे दो, जंतुर बांध दो, या ये नाटकबाजी कर लो, अभी आपको विश्वास हो जाएगा कि काम हो जाएगा हमारा, महात्मा ने आशीर्वाद दे दिया। और किसी का काम बन गया हो तो बताना, काम बनना जानते हो किसे कहते हैं? अब दुख का लेस नहीं रह गया, पायो परम विश्राम, तो कह रहे राम सबान प्रभु लाही को, कहीं विश्राम नहीं बच्चा, ये संसार चक्र में सब पिस रहे हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई, तो कमाल जी उनके पुत्र थे, तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और रहा सहारे कील के तो बाल न बाका जाए, समझ रहे ला? जो दाना सरक के कील के पास पहुंच गया, घंटों चक्की घूमती रहे, उसका बाल बाका भी ले कर सकती, इस पूरी माया को चलाने वाला भगवान कील है। उमादार जो सित की नाई सब ही नचावत राम गुसाई, नट मरकटियो सब ही नचावत राम खगेद बेद जस गावत, भैया मान लियो राय सहारे कील के तो बाल न बाका जाए, सब ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, सब सुख आपके चरणों में आ जाएंगे, पर आपको पहले भजन करके कर्मों का विनाश करना होगा जो जमा है। तुम मानो या ना मानो, कानून जो है उसका दंड तुम्हें जबरदस्ती भोगना पड़े, कोई भोगना चाहता है क्या दंड? जेल में वो कह दे कि हम नहीं मानेंगे तुम्हारे कानून, तो डंडा मार के हथकड़ी बांध के जबरदस्ती जेल में जाना, ऐसे जबरदस्ती तुमने जो कर्म किए तुम्हें भोगना पड़ेगा पूर्व में किए हुए कर्म। जैसे 10 साल से मुकदमा चल रहा है और आप बिल्कुल आचरण ठीक कर रहे हो, और आप कसम खा के कहो कि 10 साल से मैंने कोई पाप नहीं किया, तो कहेंगे हम अभी की तो बात ही नहीं कर रहे, मुकदमा तो 10 साल पहले का चल रहा है ना, वो जो किया उसको तुम्हें पूरे जीवन भोगना पड़ेगा, अब तुम्हें आयु जेल में बितानी पड़ेगी, कष्ट सहना पड़ेगा। अब बोलो कि तो गलत न्याय है, तो देखो यहाँ कानून है ना, तो ऐसे ही चूंकि बहुत जन्म होते चले आ रहे हैं तो पूर्व जन्मों का जो हिसाब है, अब नया जन्म तो हो गया है लेकिन वो हिसाब उसका जो भोगना है अभी तो कोई गलती कर नहीं करे, अभी का थोड़ी चल रहा है मुकदमा, तो पहले से चल रहा है, फाइनल हुआ है इस मानवदेह में, इतने दिनों के बाद ये तुम्हें भोगना पड़ेगा, सुख या दुख, बिना चाहे आपके दुख आते हैं, कोई चाहता थोड़ी दुख। भैया एक कर्म ऐसा है जो उसको विध्वंस कर सकता है, वो है भगवान का आश्रय और नाम जप, और वो कोई करना नहीं चाहता, हम ये देख रहे हैं। हाँ प्रायः वो हमें शुगर है, हमें कैंसर, डॉक्टर के पास जाओ, वो समझते हैं कि कलावा बांध देंगे, छू कर देंगे, आशीर्वाद दे देंगे। भूल में मत रहना, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को, महात्माओं को जो शारीरिक रोग हुए ना, भोगे हैं। क्या समझते हो, ये इडनी किडनी ठीक होना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कुछ नहीं है, पर अगर ये तो फिर वो नहीं, और वो तो फिर ये, इसकी सत्ता नहीं, इसलिए भोग लेते हैं। बड़े बड़े कैंसर है, अमुक अमुक कष्ट है, भोग लेते हैं। तो आप समझो इतना बड़ा महापुरुष रामकृष्ण परमहंस जी, भगवान कह गए गले में कैंसर था, तो तुम चाहते हो ऐसे छू छा आशीर्वाद दो तुम्हारा ठीक हो जाएगा? अब थोड़ी तो बुद्धि लगाओ यार। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, विश्व का कल्याण करने वाली मूर्ति, आज भी उनकी कलम से जो लिखा हुआ है, हजारों को साधक और सिद्ध बना रहे हैं उनके वचन। उनके उदर में कैंसर था, भयानक पीड़ा, भयानक कष्ट सही समझो। एक महात्मा 108 गोपाल शास्त्र नाम का रोज पाठ करते थे, और गिरिराज जी की रोज परिक्रमा और भिक्षा वृत्ति से लकवा मार गया ऐसे। तो पुजुड़िया बाबा, हरि बाबा, ये बड़े महापुरुष थे, समीप गए और कहा महाराज मुझे पता है आप एक संकल्प कर लो तो पूरे विश्व का लकवा ठीक हो जाए, आप क्यों इतना? तब उन्होंने कहा स्वामी जी काहे को विनोद करते हो, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए थोड़ी किया जाता है, ये शरीर तो छूटेगा आज नहीं तो कल छूटेगा, अब इसका जो भोग है भोग ले। यस, इतना बड़ा भजनानंदी महात्मा अपने रोग को सह रहा है, सत्य बात ये है। और तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई जंतु बांध दे, छूछा कर दे, हाथ रख दे, तुम निरोग हो जाओगे, पागल हो। कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम, नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो, जो दुख सुख आवे भगवान के सहारे सह जाओ, अगला सुधार लो, अगली बात संभाल लो, आगे के दुख मिटा दो, वो भगवान का आश्रय। अब हमें तो यही अध्यात्म से पता चला है कि भगवान की शरणागति के बिना दुखों का नाश नहीं। अब व्यर्थ की मेहनत करो तो बात अलग है, पढ़ाई पढ़ रहे हो आपका कर्तव्य है, परिवार के सेवन के लिए धन चाहिए आपका कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य का पालन करें। अगर कर्तव्य के पालन में दुख सुख आ रहा है उससे निरपेक्ष रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपका पूर्व कर्म बिगाड़ने के लिए तैयार है और आप अपने इस समय की पढ़ाई से आप सुख प्राप्त कर लें। एक बात है, अगर नाम जप करोगे तो समझ जाओगे। अब ये आप देख लीजिए, हमारी बात वैसे कम समझ में आएगी क्योंकि वो बुद्धि संसारिक होती है ना, तो अध्यात्म समझ में नहीं आता, ऊपर से निकल जाती है। अगर इतनी समझ में आ जाए राधा राधा राधा राधा राधा, अब चाहे मरी चाहे जी चाहे जो हो परिस्थिति, राधा राधा नहीं छोड़ूंगा, फिर आप बता देना, विध्वंस कर देगा नाम सारे अशुभों को। जरूरी थोड़ी वो जो सृष्टि बनाया है किसी सहयोगी से नहीं, अपने आप से बनाया है, और जब उससे सीधा कनेक्शन है वो कैसे देगा तुम्हें पता ही नहीं, कैसे देगा, कैसे महान आपको बना देगा, वो सामर्थ्यशाली। हमें तो यही विश्वास है, और यही बात हमें संतों की कृपा से, शास्त्र की कृपा से समझ में आई, और शायद आप भगवान की कृपा पात्र हैं कि यही बात सुनने को आपको मिल रही, नहीं तो ये बातें भी सुनने को नहीं मिलती। हाँ बातें ले सुन ले, वहां ऐसा कर दो वैसा हो जाए, राधा राधा राधा राधा, जहां श्री राधा वहां कोई नहीं बाधा है। वो एक दिले को सुबह आते है ना, तो एक बोर्ड लिए खड़े थे, न चिंता हो न भय हो, राधा राली की जय हो। जब राधा राधा तो कोई चिंता ले कोई बाधा है। और देखो दुख सुख तो सबके आते हैं जीवन में ना, सहो चुपचाप राधे राधे। हाँ बीमार हो तो डॉक्टरों से औषधि ले लो, अगर मन स्वस्थ है तो शरीर की बीमारी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी, और मन अगर ठीक नहीं है तो शरीर स्वस्थ भी है तो जलते रहते हैं, परेशान रहते हैं। तू
1: जो आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

श्रीमन नित्य निकुंज विहार ने नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामा जो श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।